ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक सम्वत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 58 सेकेंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक

0: सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव हैं वही सुंदर हैं, और वो सुंदरता ऐसी जो हमारे चक्षुओं को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को भाते हैं। ईश्वर की अनुभूति एक भक्त हर जगह कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन ईश्वर की अनुभूति के लिए आवश्यक है मन की शुद्धता, इंद्रियों का नियंत्रण और सद्मार्ग पर चलना। ईश्वर की जो भी कथाएं हमारे सम्मुख हैं, वो एक आदर्श स्थापित करती हैं आपके हमारे सामने, और ईश्वर का जीवन या ईश्वर की लीलाएं मनुष्य को पग पग पर प्रेरित करती हैं कि हम कैसे स्वयं को नियंत्रित रखें, स्वयं को सन्मार्गी बनाएं, माया मोह आडंबर से बचकर रहें, और इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए प्रभु आराधना करते हुए अपने जीवन को संचालित करें। ईश्वर मन के भाव देखते हैं। भगवान शिव ने भी जब त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने सेवा और भक्ति के कीर्तिमान स्थापित किए। तो आइए शिव के मूल स्वरूप की स्थापना के बाद उनके अंश रूप हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना कर लेते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं आपका पुनः स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। जब हम नहीं थे तब भी ये सृष्टि संचालित थी, आज हम हैं तब भी है, और कल हम नहीं होंगे तब भी ये सृष्टि ऐसे ही संचालित होती रहेगी। ये मानना है, ये अवधारणा है, लेकिन एक इंसान के लिए दुनिया कितनी, जितनी उसने देखी। लेकिन कोई है जो हमसे पहले से भी देख रहा है और हमारे बाद तक भी देखेगा। हम एक यात्रा पर हैं, यहां मात्र हमारा कुछ वक्त का ठहराव है, और ये यात्रा निर्धारित करती है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। ये परमात्मा का अंश यूं ही भटकाव की स्थिति में रहेगा या फिर परमात्मा में विलीन होकर परम शांति की प्राप्ति करेगा। एक कालखंड था जब ऋषि मुनि वर्षों वर्ष की तपस्या करके ईश्वर की भक्ति मांगते थे, उनका आशीर्वाद मांगते थे, उनका दर्शन मांगते थे। लेकिन इस कलिकाल में प्रभु की प्राप्ति का, मोक्ष का द्वार बना सिर्फ ईश्वर का नाम सुमिरन। जिस मनुष्य ने उनके नाम का जितना अभ्यास कर लिया, जिस जीवा पर प्रभु का नाम चढ़ गया, वो राम नाम रटते रटते ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और इस भवबंधन की दुनिया से मुक्ति पा लेता है।

इस चराचर जगत में मनुष्य नित्य नए प्रयास करता है, जी जान लगा देता है भौतिक संसाधनों को जोड़ने हेतु। ये भ्रम है कि उनसे हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। एक आकांक्षा की पूर्ति नई आकांक्षा को स्वतः जन्म दे देती है। लेकिन जिसने भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया, उसके मन की शांति और उसके चित्त का आनंद अनुपम होता है। फिर उसे कोई माया मोह बांध नहीं पाता और वो अपने आनंद में सर्वत्र प्रभु के दर्शन करता है। कण कण में उसे ईश्वर का वास नजर आता है और वो बस उसी भक्ति में मदमस्त अपने जीवन को चलाता रहता है, प्रभु का गान करते हुए।

ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें, सद्बुद्धि प्रदान करें और सन्मार्ग पर लेकर चलें। इसी कामना के साथ कार्यक्रम आराधना से अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए।

0: सुनिए राजा राम मोहन राय के विचार।
1: राजा राम मोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राममोहन राय ने इस समस्या के हर पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं। उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन राय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने 2 तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
0: अभी आप राजा राम मोहन राय के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मनबोध प्रसाद से सुरेश कुमार की बातचीत। बातचीत का विषय है मृदा में जीवांश की महत्ता। लीजिए सुनिए।
1: भैया खेती किसानी में देखा जाता है कि माटी में जीवांश की मात्रा मिल जाते है तो माटी की पैदावार बढ़िया हो जाते है, उपज जो किसान भैया बहनी करते है तो बढ़िया लाभ मिलते है। तो आज अपने कार्यक्रम भैया डॉक्टर मनबोध प्रसाद भैया जो उन्हें प्रधानाचार्य कोऑर्डिनेट इफको फूलपुर से आए न हमें, तो हम अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहते थे कि जीवांश पदार्थ ई आय का।
2: किसान भाइयों, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के अवशेष जो मिट्टी में पाए जाते हैं या बाहर से मिलाए जाते हैं उनको हम मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं।
1: हाँ।
2: मिट्टी आप जानते हैं कि हमारे सबके जीवन का आधार है
1: जी,
2: और जीवांश पदार्थ मिट्टी का प्राण है। मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा मिट्टी की गुणवत्ता का परिचायक, यानी कि जिस मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है
1: जी
2: उसकी उत्पादकता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है।
1: हाँ।
2: हमारी मिट्टी जो है वो सभी फसलों की जन्मदात्री है, इसलिए बचे हुए अवशेष यानी मनुष्य और पशुओं के उपयोग के बाद बचा हुआ जो अवशेष है उस पे सबसे पहला अधिकार हमारी मिट्टी का है।
1: हाँ।
2: वो अधिकार उस अवशेष को सड़ाने के रूप में, उसको जलाने के रूप में नहीं।
1: हाँ।
2: कैसे कि अग्नि उसको जला के राख कर देती है और वायु उसको उड़ा के अन्यत्र पहुंचा देती है
1: जी।
2: लेकिन अगर हम उसको सड़ाते हैं तो वो मिट्टी में जीवांश पदार्थ पैदा करता है। इस प्रकार से इस जीवांश पदार्थ के विघटन के दौरान ह्यूमस बनता है जो एक जटिल अवयव है जिसको हम मिट्टी का दिल भी कह सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इसलिए मिट्टी ज्यादा उर्वर हो और उत्पादक बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि उसका दिल यानी उसमें ह्यूमस ज्यादा हो, मजबूत हो
1: जी।
2: तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है जीवांश की मात्रा है।
1: हाँ।
2: उसको कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए हम मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: मिट्टी परीक्षण में हम ऑर्गेनिक कार्बन प्रतिशत के रूप में हम उसकी जांच करते हैं और उसके आधार पर भी मिट्टी में उसका स्तर पता लगता है।
1: अच्छा।
2: यानी अगर उस मिट्टी में 0.4% या उससे कम है तो ये मिट्टी निम्न स्तर की है।
1: अच्छा।
2: अगर 0.4% से 0.8% तक ऑर्गेनिक कार्बन है।
1: हाँ।
2: तो ये मिट्टी मध्यम दर्जे की है
1: जी।
2: और अगर 0.8% से ऊपर है।
1: हाँ हाँ।
2: तो इसमें उच्च स्तर है, मतलब ये अच्छा स्तर है। और किसी भी दशा में जो हमारी मिट्टी है इसमें 1% से ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता है।
1: अच्छा।
2: लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं या जो ठंडे देश हैं।
1: हाँ।
2: वहाँ की मिट्टियों में जरूर 1% से ज्यादा ये ऑर्गेनिक यानी वहाँ पे जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताएं कि माटी में जीवांश की मात्रा पाई जाते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भैया बहनियाँ कौन तरीकन का अपनाएं, किस बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि जीवांश पदार्थ के जो स्रोत हैं कैसे कैसे और कहां कहां पर कैसे प्राप्त अच्छे पर्याप्त रूप से मिल सके, इस बारे में बताएं।
2: देखिए जीवांश पदार्थ के जो सबसे ज्यादा स्रोत है वो है पादप यानी पौधों, पेड़ पौधे, फसल।
1: अच्छा अच्छा।
2: जिसे फसलों पेड़ पौधों के अवशेष।
1: हाँ, हाँ।
2: प्राकृतिक दशा में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, घास हैं, झाड़ियां हैं एवं फसलों के अवशेष हैं तथा फसल को जो हम काटते हैं तो काटने के बाद जो उनकी जड़ें मिट्टी में रह जाती हैं।
1: हाँ।
2: वो मिट्टी को जीवा

0: खाद्यान्न पदार्थ देते रहते हैं।
1: जी
0: जैसे अगर हम गेहूं काट लें तो गेहूं काटने के बाद जो जड़ बचता है उससे 5 से 6 क्विंटल तक जीवांश पदार्थ मिट्टी को मिलता है। उसी तरह से घास फूस है, अगर इनको देखें तो 50 से 100 क्विंटल तक। हमारी जो मटर की फसल है लगभग 2 क्विंटल तक उसके जड़ों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को मिलता है। इसका दूसरा स्रोत है जैसे हम लोग गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, सिटी कंपोस्ट, फ्रेश मड जो चीनी मिलों से निकलता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें भी जीवांश की मात्रा अधिक होती है। जब हम खेत में मिलाते हैं तो इनसे जीवांश की उपलब्धता मिट्टी में बढ़ती है। आज बहुत ज़्यादा जोर हरी खाद पे भी दिया जा रहा है। जीवांश का एक बहुत अच्छा स्रोत हरी खाद भी है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया, ग्वार, अन्य फसलें जिनकी फली तोड़ने के बाद हरे रूप में ही हम जोत के मिट्टी में मिला देते हैं, उसको सड़ा देते हैं, जिससे हरी खाद कहते हैं। और इस हरी खाद को मिलाने से भी हमारी भूमि को जीवांश पदार्थ मिलता है, इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आप देखें तो जो हरित जो पौधे हैं इनके अंदर लगभग 75% तो केवल पानी होता है
1: जी,
0: शेष 25% ही शुष्क पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और खनिज पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हम गांव में पशुओं को या मुर्गी पालन करते हैं तो पशुओं का जो बिछावन है, मुर्गी का जो लीटर है, बिछावन है एक तरह से, मुर्गी की खाद भी जिसको कहते हैं, ये भी जीवांश पदार्थ के अच्छे स्रोत हैं।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा जो जीव जंतु हैं वो भी कुछ मात्रा में जीवांश पदार्थ भूमि को देते हैं। जैसे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीवाणु हैं, जानवरों के अवशेष हैं, ये भी जब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो स्वतः मिट्टी में मिलके और उसको जीवांश की उपलब्धता कराते हैं। कहते भी हैं कि यह माटी की शरीर अंत में माटी में मिल जाती है
1: जी।
0: तो जो जीव जंतु हैं वो भी कुछ हद तक जीवांश की पूर्ति मिट्टी में करते हैं।
1: अच्छा, साथ ही साथ हम आपसे एक और बात जानना चाहिए थे कि मृदा में जीवांश पदार्थ के जौन वैज्ञानिक प्रबंधन है, जौन तरीका बा, हमारे किसान भैया बहनी है कौन तरीका से अपनावें, बताओ।
0: किसान भाइयों, सबसे अधिक स्रोत जो है, जो हमने बताया कि फसलों का अवशेष, तो उन फसलों के अवशेषों का अगर हम सही प्रबंधन करें, उसका पुनर्चक्रीकरण करें, भूमि में अगर पुनः लौटाने का प्रबंध करें, तो इससे आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही हम जो अमूल्य धरोहर है, हमारी धरती है, जल के स्रोत हैं, पारिस्थिति की भी रक्षा, प्रकृति और उसके पर्यावरण के बीच सामंजस्य बना पाएंगे और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन से हम समेकित पोषक तत्व प्रणाली का भी एक अनूठा तरीका अपना सकते हैं, जिसमें भूमि से पोषक तत्वों का दोहन रुक जाता है, मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, जो हमारी फसलों की उपज है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसके उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है
1: जी।
0: उर्द, मूंग, लोबिया, दलहनी फसलों का जब हमारी खाद के रूप में उपयोग करते हैं तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और ये भी देखा गया है कि मूंग की फली तोड़ने के बाद अगर उसको हम भूमि में पलट के मिला देते हैं तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के बाद भी जितना हम संस्तुति डोज यानी 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 30 किलो पोटास है, उसके बराबर उपज प्राप्त करते हैं
1: जी।
0: इस प्रकार से अगर हम इनका सही सही उपयोग करें और साथ ही बायो फर्टिलाइजर और बायो डिकम्पोजर इसके इस्तेमाल से हम इन अवशेषों को अच्छी तरह से सड़ा सकते हैं और इनके सड़ाने से हमारे भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मृदा में जीवांश की महत्ता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनबोध प्रसाद से सुरेश कुमार की बातचीत। किसान भाइयों, अब

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर VB निघोसकर की वार्ता, कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार।
1: कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। यह पुरुषों में ज़्यादा होता है, पर महिलाएं इसकी द्योतक यानी कैरियर होती हैं। यह एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन है तो उस पुरुष को यह रोग हो जाएगा। महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यदि एक पर रोग की जीन है और दूसरा सामान्य है तो उस महिला को ये रोग नहीं होगा, लेकिन उस महिला को होने वाले कुछ लड़कों में यह रोग निश्चित ही हो सकता है। अतः महिला कैरियर हो जाती है। लाल हरे कलर ब्लाइंडनेस इसी कारण से होते हैं। नीला पीला कलर ब्लाइंडनेस और पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस अन्य क्रोमोसोम्स पर पारित होते हैं, इसलिए यह पुरुष और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ नेत्र रोग जैसे ग्लोकोमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, दिमाग की बीमारियां जैसे अल्जाइमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ केमिकल्स तथा दवाओं के दुष्प्रभाव से भी व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो सकता है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति लाल हरे रंगों में ठीक से भेद नहीं कर पाता। ट्रैफिक सिग्नल पहचानने में दिक्कत हो सकती है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति सोचता है कि जैसा उसे दिख रहा है वैसा ही बाकी लोगों को भी दिख रहा है। आंशिक कलर ब्लाइंडनेस में लक्षण कम होते हैं तथा ज़्यादातर सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस आदि के मेडिकल चेकअप में इस बीमारी को पकड़ा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाले इशिहारा चार्ट में अलग अलग रंगों से लिखे नंबर कलर ब्लाइंड मरीज या तो पहचान नहीं पाता या कोई दूसरा नंबर दिखता है। इसके लिए और भी जांचें होती हैं जिससे किस प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है और किस रंग का कलर ब्लाइंडनेस है ये सुनिश्चित किया जाता है। अनुवांशिक बीमारी होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं होता। रंगों को पहचानने के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे के ऊपर फिल्टर आदि दे सकते हैं, पर यह ज़्यादा कारगर नहीं होते। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलते ही ग्रसित व्यक्ति को कैसे पेशा चुनना चाहिए इसकी सलाह जरूर दी जाती है। जिस पेशे में रंगों का ज़्यादा काम न हो वह कलर ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। यूजेनिक्स के अंतर्गत कलर ब्लाइंड व्यक्ति के परिवार में आगे की पीढ़ियों में भी यह रोग लड़कों को हो सकता है तथा इसके लिए बच्चे कम रखना या गोद लेने की सलाह भी दी जाती है। लड़कियां कैरियर हो सकती हैं और उनके बच्चों को, खासकर लड़कों को, यह बीमारी हो सकती है। अगर किसी केमिकल या दवा के दुष्प्रभाव से व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो रहा है तो उसे बंद किया जाता है या बदला जाता है। भविष्य में जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही इसका एक इलाज है जिस पर अभी शोध कार्य चल रहा है।
0: कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार। अभी आप डॉक्टर VB निघोसकर की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

संसद समीक्षा सुनवाएंगे रात 8 बजे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनिएगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। विधानमंडल समीक्षा सुनिएगा रात 8:20 पर, और उर्दू कार्यक्रम लेकर के आएंगे रूस की तरह सुबह 9:30 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का शास्त्रीय गायन सुनिएगा सुबह 7:30 और दिन में 12:15 पंडित गोपाल दास का क्लेरियोनेट वादन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में विनीता मिश्रा के स्वर में भजन गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 10:30। स्वर होंगे सूरज सोनकर, सुषमा मौर्य, पंचम लाल यादव और साथियों के। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11:00 और अपने फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश।

महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत चंद्रा त्रिपाठी की सोदाहरण वार्ता होगी सावन और कजरी, साथ ही आस्था सिंह किशोर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 2:30। धरती के गीत सुनवाए जाएंगे शाम 5:00। स्वर होंगे रामबाबू यादव और साथियों के। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर लेकर के आएंगे शाम 6:30। इसके अंतर्गत सिया राम मिश्र से रामायण पाठ सुनवाया जाएगा, साथ ही विष्णु राजा के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

0: संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8:30। गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशा के साथ रात 9:30। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33

श्री रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन।

अभी आपने सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से ये भक्ति रचना सुनी। गीत और संगीत अनु मलिक का था। लीजिए सुनिए फिल्म परिवार।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही अब आज का फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ।

0: प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया, साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा की जाए।
1: यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े भी मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
2: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
0: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक कल पारित हो गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
3: यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_

0: के पेपर भी उपलब्ध है। लखनऊ में कल से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जेएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। इस अवसर पर सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉ. सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ देश प्रगति के पथ पर है।
1: बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री ने गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता था। नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता था, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल आगरा के डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉ. आम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल मंत्र दिया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। आज इमाम हुसैन का चेहल्लुम मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में निकलने वाले ऐतिहासिक जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चेहल्लुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग भटियार में ख्याल गायन।

विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना भी एक ताल में है। विलंबित रचना के बोल हैं बरनी न जाए और द्रुत रचना के बोल हैं शुभ घड़ी शुभ दिन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री श्रवण कुमार भट्ट और तानपुरा पर हैं श्री श्रीकांत वैश्य।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग भटियार में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री श्रवण कुमार भट्ट और तानपुरे पर थे श्री श्रीकांत वैश्य। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं, और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ

0: और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है।

0: एस दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली

0: अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंगबाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोक सत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Parliamentary Committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. An Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के उहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं

0: करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के अरकान पार्लियामेंट में NDA की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस दो रोज़ा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजह किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आज़ाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के हुक्मनामे, जिसमें मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त दी गई थी, का इतलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जिन पर संगीन और घिनौने जराइम के इल्ज़ाम हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत ऐसे हालात और तरीक़ेकार के लिए एक ज़ाब्ता मुरतब करेगी जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सके। बेंच ने मजीद कहा है कि वो पुलिस की मुबैना ज्यादतियों की तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने या मुतबादिल के तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकती कमेटी कायम करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी जवाबित 1979 में तरमीम के लिए एक मुसविदा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए दो पहियों वाली रोड एम्बुलेंस मुतारिफ कराने की तजवीज़ पेश की गई है। वजारत ने कहा है कि इस मुजवजा हंगामी एम्बुलेंस सर्विस से एमरजेंसी की सूरत में फौरी रसाई मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। खुराक से मुतालिक इंजिबाती इदारे FSSAI ने डाबर इंडिया को 100% दावे का इस्तेमाल करते हुए शहद, गाय का घी और खुर्दनी तेल जैसी कई अशिया फरोख्त करने से रोक दिया है और कहा है कि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने बताया कि उसने 100% का गुमराह कुन दावा करने वाली गजाई अशिया की फरोख्त के मामले पर डाबर इंडिया लिमिटेड को ममानियत से मुतालिक हुक्म जारी किया है। इन अशिया में शहद, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी

0: और कोल्लम को छोड़कर रियासत के बाकी सभी जिलों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में 353 इमदादी कैंप काम कर रहे हैं, जहां 13,496 अफराद ने पनाह ले रखी है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 56 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि कोई 500 मकानों को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 16 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 5 अफराद अब भी लापता बताए गए हैं। इधर मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में कल से बारिश का जोर कम होने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद हिस्सों में भी औसत से लेकर तेज बारिश होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मंसूबा बंद हमला उस वक्त मौखर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सिफारतकारी जारी रखने की अपील की। जनूबी कोरिया के शहर आसन में सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। यह टूर्नामेंट इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सबकी निगाहें 17 साल तन्वी शर्मा पर होंगी, जो ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने 3 रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में हुए जिमनी चुनाव के नतायज के ऐलान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि बिहार में बांकीपुर से प्रशांत किशोर, मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस जबकि गुजरात की मांजल सीट से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब। रोजनामा प्रताप ने वजीर दफा राजनाथ सिंह के उस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निज़ाम में फौजी और सिविलियन अहलकारों के दरमियान तआवुन बेहद ज़रूरी है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले बिल को मंजूरी दी। ये बिल कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और CEO मार्क जकरबर्ग से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। NDA पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई FIR बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तला को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना, पर इसे जीने में कदम कदम पर नए नए चैलेंज हैं, तो दूसरी तरफ कितनी अनोखी बातें हैं जो अब तक हमारी निगाहों

से छुपी हुई हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि हम लम्हा लम्हा लगा देते हैं अपने कल को संवारने के लिए, और अगले ही क्षण क्या हो जाए हमें खुद पता नहीं होता। यहां 2 मिनट में बाढ़ आ सकती है, 30 सेकंड में भूकंप आ सकता है, 10 मिनट में आंधी आ सकती है। आपदा दस्तक नहीं देती, पर हम तैयारी तो कर सकते हैं। जी हाँ, चल रहा है बरसात का मौसम और आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें आ रही हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ लोग इसमें हताहत भी हो रहे हैं, भवन गिर रहे हैं, नदियां कट रही हैं, पुल टूट रहे हैं। इन तमाम तरह की घटनाओं के बीच ज़रूरी है कि इन आपदाओं से बचने के लिए हम खुद को तैयार रखें, सतर्क रखें। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपदा दस्तक नहीं देती, पर हम तैयारी कर सकते हैं या फिर बचने की कुछ कोशिश प्रयास तो कर ही सकते हैं। आपदा प्रबंधन यानी मुसीबत आने से पहले, आने पर और जाने के बाद हमें क्या करना है। जान बचाना है तो जानकारी तो हम सबके पास होनी ही चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अपने आसपास की जगहों के, प्रयागराज के आसपास की जगहों की बात करें, तो बरसात के मौसम में हमारे यहाँ भी नदियों में बाढ़ आती है, शहर के कुछ इलाकों में पानी भर जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ जलभराव हो जाता है। आंधी तूफान, लू, अभी थोड़े समय पहले ही हम इससे थोड़ा आगे बढ़े हैं, अप्रैल जून में तेज़ गर्मी होती है और अचानक आंधी आ जाती है, और हम लोग भूकंप जोन 4 में हैं जहां हल्के झटके आते रहते हैं। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट से, त्योहारों पर आग लगने की संभावना बनी रहती है, और सड़क हादसे और कोहरे से जाड़ों के दिनों में देखने की क्षमता कम हो जाती है। NDRF कहता है कि 80% जान बच सकती है अगर पहले 72 घंटे में सही कदम उठाया जाए। मतलब आपदा बड़ी तो है, लेकिन आपदा के हिसाब से हमारी तैयारी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने तैयारी ठीक ढंग से कर रखी है तो 80% तक उम्मीद है कि उस आपदा से हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब तैयारी के लिए हमें क्या करना है, 3 बातों को हमेशा याद रखना है, या कहिए तैयारी के 3 थैले हमें हमेशा अपने साथ तैयार रखने हैं। घबराइए मत, ये 3 चीज़ें आंधी लड़ाई को जीत जाएंगे। जो ये 3 थैले अगर हमने तैयार कर लिए तो आपदा के साथ हमारी जो लड़ाई है वो लगभग 50% लड़ाई हम जीत लेंगे। पहला थैला क्या है, परिवार आपदा किट। एक बैग में रखें पीने का पानी, सूखा खाना कम से कम 3 दिन का हो, दवाइयाँ, टार्च, एक्स्ट्रा बैटरी, पावर बैंक, ज़रूरी कागज़ की फ़ोटो कॉपी, नकदी, कपड़े और रेनकोट। दूसरा थैला, इस थैले में हम क्या रख सकते हैं, घर के सभी लोगों को मिलने का पॉइंट बताएं, वो जगह बताएं कि अगर इस आपदा में हम बिछड़ जाते हैं, किसी दूसरी जगह अलग थलग हो जाते हैं, तो हम बिछड़ कर अमुक जगह पर मिलेंगे, घंटाघर में मिलेंगे या सिविल लाइंस की किसी जगह पर मिलेंगे। पड़ोसी, डॉक्टर, बिजली पानी विभाग का नंबर हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें, और जो हमारी इमरजेंसी के नंबर हैं, एम्बुलेंस के नंबर हैं, ज़िला कंट्रोल रूम के नंबर हैं, ये सब भी हमें अपने पास नोट करके रख लेना चाहिए। और तीसरा थैला, घर को सुरक्षित करें। जैसे गैस का मेन वॉल्व जो है उसे हम बंद कर दें, बिजली का मेन स्विच कहाँ है ये सबको पता होना चाहिए, छत से गमले टीन हटा लें, नालियाँ साफ रखें ताकि बाढ़ ना आए, और भूकंप के लिए हमें भारी सामान नीचे रखने चाहिए, और ख़ासकर दरवाजे के आसपास की जगह को तो बिल्कुल ही खाली रखना चाहिए। अब बात आती है कि आपदा के समय हम क्या करें और क्या ना करें। अलार्म बजा तो दिमाग ठंडा रखना है भाई। बाढ़ में क्या करें, ऊंची जगह पर जाएं, बिजली बंद करें, बच्चों बुजुर्गों को साथ रखें, और जो नहीं करना है वो ये कि बहते पानी

जर्मनी में ना गाड़ी से जाना है और ना पैदल जाना है। 6 इंच पानी भी गाड़ी बहा सकता है, यह निर्भर करता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। तो वहाँ पर हमें बहादुरी नहीं दिखानी है, बल्कि कोशिश करना है कि हम उस पानी में ना जाएं। अब बात आती है कि आंधी और लू अगर है तो उसमें हमको क्या करना है। लू का वक्त तो चला गया लेकिन फिर आएगा अगले साल, तो इसमें हमें क्या करना है कि घर के अंदर रहें, खूब पानी पिएं, पेड़ और खंभे से दूर रहें। और जो हमें नहीं करना है वो ये है कि धातु की छड़ और खुले मैदान में शरण हमको नहीं लेनी है। अब यदि भूकंप की आपदा है तो हमें क्या करना है, ड्रॉप कवर होल्ड। ये 3 बातें हमें याद रखनी है, मतलब कि नीचे बैठो, टेबल के नीचे छुपो, टेबल को पकड़ कर बैठो, या फिर बाहर खुले में जाओ। और क्या हमें नहीं करना है, लिफ्ट खिड़की शीशे के पास नहीं जाना है और अफवाह नहीं फैलानी है। ये सबसे बड़ा नियम है कि हमें अफवाहों से बचना चाहिए, सिर्फ सरकारी रेडियो टीवी की बात माननी चाहिए और हमारा ज़िला कंट्रोल रूम हमें जो सूचनाएं देता है हमें उसको मानना चाहिए। आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए कि आंधी रुक गई, पानी उतर गया, लेकिन ख़तरा तब भी बना हुआ है। आपदा के बाद हमें क्या करना है, बिजली के तार, गैस लीक चेक करना है, बासी खाना, दूषित पानी नहीं लेना है, डायरिया हैजा का खतरा हो सकता है। मदद करें, अकेले बुजुर्ग पड़ोसी का हाल चाल लें, क्योंकि जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो हमारा पड़ोस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। और सबसे बड़ी बात, हमें यह मिथक तोड़ना है कि जो कुछ भी करना है वो सरकार ही करेगी। नहीं, पहले 1 घंटे हमें खुद कोशिश करनी है। सरकार की सुविधाएं पहुंचने में कुछ वक्त लग सकता है, तो हम उसके भरोसे नहीं बैठे रहना है। याद रखिए, आपदा को टाल नहीं सकते पर तबाही को कम जरूर कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं। जब भी मौका मिले या फिर बहुत ज़रूरी बात है, आज ही मौके निकाल करके अपने घर में इन 3 थैलों को तैयार रखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में हर कदम पर चुनौतियां हैं तो इंसान के पास उन चुनौतियों से लड़ने का जज्बा भी होना चाहिए, क्योंकि जो जंग है वो हथियारों से कम और जज्बों से ज़्यादा लड़ी जाती हैं। तो ज़िंदगी की जंग को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए।

तो श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और फिलहाल अभी इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपने रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभय कांत तिवारी। नमस्कार प्रयागराज जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं अलाइसा मेंडोंसा और मोहित चौहान की आवाजों में इस गाने से, जिसे हमने लिया है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। जावेद अख्तर के बोलों को सुरों में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म 1942 अवल लव स्टोरी से ही। जावेद अख्तर के बोल हैं, आर डी बर्मन साहब का संगीत है, आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: ये गाना हमने लिया था फिल्म ये जवानी है दीवानी से। आवाज़ मोहित चौहान की थी, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की थी और संगीत प्रीतम का। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का।
3: जनपद सुल्तानपुर में जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई और खरीफ की फसलों को राहत मिली, लेकिन पूरे मानसून सीजन की शुरुआत 1 जून से 3 अगस्त के हिसाब से जिले में अब भी वर्षा सामान्य से लगभग 1/4 कम दर्ज की गई है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा नहीं होती तो धान सहित अन्य खरीफ की फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के निर्णय का जिले के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता खेती किसानी में सहारा देती है और यह फैसला किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिले के लोहरा मऊ भगवानपुर के किसान श्रीनाथ भार्गव ने कहा,
4: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है ये हम किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, हम लोग तो बहुत प्रसन्न हैं इनसे।
3: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जिले में कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी व उत्पादन वृद्धि के संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने बताया,
5: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसमें जो भी धनराशि दी जाती है उससे वो किसान भाई अपने जो कृषि निवेश है उनको खरीद करके जो प्रति उनके खेत पड़े रह जाते थे उसमें फिर से खेती कर सकेंगे और इस प्रकार जिले के किसान आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका उन्नयन हो सकेगा।
3: श्रावण मास शुरू होते ही कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख राजमार्गों और कावड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सतत निगरानी और पेट्रोलिंग कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने बताया,
6: जितने दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुपात में उपलब्ध जो हमारी फोर्स है उसको लगाया गया है। प्रयास पूरा है कि किसी भी तरीके से कोई एक्सीडेंटल घटनाएं ना हो।
3: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी

0: जारी जुलाई 2026 की IGRS मासिक रैंकिंग में सुल्तानपुर पुलिस ने 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण तथा शिकायतकर्ताओं से मिले संतोषजनक फीडबैक के आधार पर यह उपलब्धि हासिल हुई है। शासन ने शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए सुल्तानपुर पुलिस को प्रदेश में सर्वोच्च स्थान दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जुलाई 2026 में जिले में 3 सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1223 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इनमें 20 जुलाई को 477, 21 जुलाई को 539 तथा 31 जुलाई को बल्दी राय ब्लॉक में 207 जोड़ों का विवाह कराया गया। बल्दी राय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 205 हिंदू एवं 2 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता एवं गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन ने इसे सामाजिक समरसता और जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देने की महत्वपूर्ण पहल बताया। वन विभाग ने सुल्तानपुर जिले की 979 ग्राम पंचायतों को अगले 4 वर्षों में हरित ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत सदर, कादीपुर, जयसिंहपुर और लम्भुआ रेंज में पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, शीशम, सागौन, आम और अमरूद जैसे पर्यावरण संरक्षण वाले पौधे लगाए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि वर्ष 2030 तक जिले के 15% क्षेत्र को हरित आवरण से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान में कृषि, पंचायती राज समेत अन्य विभागों का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य हरियाली बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।
1: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
2: मुजफ्फरनगर जिला इस समय हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो रहा है। हर द्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लाखों कांवड़िए जनपद से प्रतिदिन अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। शिव भक्त कांवड़िया अपने गाँव और कस्बों के शिवालयों में पवित्र सावन माह में जलाभिषेक करते हैं। आगामी 11 अगस्त यानी महाशिवरात्रि तक मुजफ्फरनगर जिला पूरी तरह शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में डूबा रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के सभी मुख्य मार्गों पर कांवड़ियों के लिए कांवड़ सेवा शिविर बने हैं। इन शिविरों में हजारों लोग शिव भक्तों की दिन रात सेवा कर रहे हैं। शिविरों में शिव भक्तों के लिए भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। 4 अगस्त से सभी मुख्य मार्गों पर वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे और यह सभी मार्ग कांवड़ियों के हवाले हो जाएंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के शिव चौक पर ATS तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 89 सेक्टर और 141 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। जिन मुख्य मार्गों से शिव भक्त कांवड़ निकलते हैं उन सभी मार्गों पर 4 अगस्त से आम जनता की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। DGP राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरठ जोन के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु अथवा आम नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या व्यवधान का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों को के अधिकारियों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। दिल्ली पुलिस ने ISI से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ चांदमिया और सलमान मुजफ्फरनगर जनपद के अंति गांव निवासी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सलमान और दानिश उर्फ चांदमिया दोनों दोस्त हैं और इनमें से सलमान जहां दिल्ली में रहकर फर्नीचर का काम करता है तो वहीं दानिश उर्फ चांदमिया सोलर पैनल लगाने का काम करता है। सिविल लाइन थाने में SSI प्रवीण शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सीधे सिविल लाइन थाने के

0: नजर हुई। रिश्वत लेने के तुरंत बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना सिकेड़ा ले गई, जहां आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। मुजफ्फरनगर जनपद स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक माह में 3 अलग अलग मामलों में 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। लूट के बाद हत्या के एक मामले में 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3rd के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर द्वारा 4 अभियुक्तों अजीत, अनिल, सुनील और सूरज को फांसी की सजा सुनाते हुए सभी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तिताई इलाके के मांडी गांव में 16 वर्ष पूर्व चुनावी रंजिश में हुए बहुचर्चित राजवीर सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व प्रधान सहित 2 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मामले को दुर्लभ और दुर्लभतम मानते हुए पूर्व प्रधान प्रमोद और सहदेव उर्फ पप्पू को फांसी की सजा सुनाई। मुजफ्फरनगर के फुगौना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में कच्चा मकान गिरने से एक पिता और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। भारी बारिश के बीच मकान गिरने से 52 वर्षीय पिता इस्लामुद्दीन, बेटा जिशान 8 माह, आहद 2 साल, बेटी अल्फिसा 5 साल और रुकसान तकरीबन 12 साल की जेसीबी की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर जिले में जुलाई माह के प्रारंभ में हुई लगातार बारिश के चलते गंगा नदी, काली नदी और हिंडन नदी में कई दिन तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के सभी उपाय किए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में ये देश का गान।

0: अभी आप सुनवेत सुरों में ये देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
2: हाजिर है लेके अपना सलामे खुलूस हम, हाजिर है लेके अपना सलामे खुलूस हम, फिर से सजाई महफिल फिर आ गए हैं हम। इस पैगाम के साथ हाजिर है आपका मेजबान फरीदुल्लाह खान, आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामीन, उर्दू अदब बेशबहा सरमाया है। उर्दू अदब के जरिए मुसन्निफीन, मुजाहिदीन आजादी, अफसाना निगारों, शायरों ने अपने मुल्क के लिए अपने कलम से इस मुल्क को आजादी दिलाने में अहम किरदार अदा किए हैं। उर्दू अदब में फिक्शन में अफसाना, जिसको आज भी खूब पसंद किया जाता है, इसके लिखने पढ़ने और सुनने वालों की कभी कमी नहीं रही। इसमें हमेशा बढ़ोतरी रही है और आगे भी ये सिलसिला जारी और सारी है। तो सामीन, आज हम भी आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ये अफसाना। आज की हमारी अफसाना निगार हैं मोहतरमा आरिफा मसूद साहिबा। समाप्त कीजिए उनसे ये अफसाना।
3: सुबह के 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। शहर की सड़कें पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी, मगर स्कूल की इमारत जाग चुकी थी। गेट के बाहर नीम के दरख्त से ओस के कतरे टपक रहे थे। बरामदों में रात की ठंडक भी बाकी थी और असेंबली ग्राउंड पर हल्की सी धुंध बिछी हुई थी। ऐसे में एक आदमी खामोशी से गेट खोलता, जंजीर एक तरफ रखता और आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होता है। उसका नाम था सूरज पाल। स्कूल के कागजात में इसके ओहदे के सामने सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, चपरासी। मगर हकीकत ये थी कि इस एक लफ्ज के अंदर कई पेशे, कई जिम्मेदारियां,

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने

0: की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं विनीता मिश्रा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना।

इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारी आज की कलाकार थी विनीता मिश्रा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को से इससे माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जुकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जुकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही में प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल

0: की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन संसद भवन में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स और पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान में परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दूसरा चरण बताया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुडा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। किदाम्बी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आगाज कर रहे हैं फिल्म सबक के गाने से, जिसे आवाज दी है मुकेश ने। गीत सावन कुमार का है और संगीत उषा खन्ना का है।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म कयामत से कयामत तक से। मजरूह के बोलों को सुर में पिरोया है आनंद मिलिंद ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम का अगला गाना है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। संतोष आनंद के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

मजरू के गुलों को सरोती रहे थे मदन मोहन ने आवाज थी लता मंगेशकर और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सैनिक से गाना, रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सूरज सोनकर के गाए इस देवी गीत से।

अभी आपने सूरज सुनकर के स्वर में ये झूमर सुना। हमारी अगली कलाकार हैं सुषमा मौर्या, इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं किशोर कुमार।

संगीत वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया बिना अनुवाद के समझती है। भारतीय संगीत जगत के उस अनमोल सितारे के बारे में आज आपसे बोलने जा रहे हैं जिनकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। वो है किशोर कुमार।

किशोर कुमार केवल एक गायक नहीं थे, वे एक अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता, निर्देशक और अद्भुत कलाकार थे।

किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त यानी आज ही के दिन 1929 को मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ था। बचपन से ही वे अपनी सोच, हास्यप्रिय स्वभाव और असाधारण प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। किशोर कुमार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, फिर भी अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर वे भारतीय फिल्म संगीत के सबसे महान गायकों में गिने जाने लगे।

उनकी आवाज में खुशी भी थी, दर्द भी, उत्साह भी था और गहराई भी। यही कारण है कि हर पीढ़ी आज भी उन्हें उतना ही प्यार करती है। उनके योग

योगदान के लिए उन्हें 8 फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए प्राप्त हुए, जो अपने समय में एक रिकॉर्ड था। वर्ष 1997 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से लता मंगेशकर पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उनकी कला ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया।

कला ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया।

कहा जाता है प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन महानता निरंतर प्रयास से बनती है। किशोर कुमार इसका जीवन उदाहरण थे। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि अपने हुनर पर विश्वास हो तो सफलता किसी डिग्री या परंपरा की मोहताज नहीं होती। उनके जीवन से प्रेरित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। सुरों में जिसने सांस भरी, हर दिल में नई आस भरी, आवाज भले ही थम गई, यादों में उनकी लौ धरी रही।

किशोर कुमार का जीवन हमें सच्ची कला समय की सीमाओं से परे होती है यही सिखाता है। कलाकार शरीर से भले ही इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसकी कला सदैव जीवित रहती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।

महान लोग अपने जीवन से नहीं अपने कार्यों से अमर होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीप्ति अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं चांदनी फिल्म से सुरेश वाडकर को

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म नमक हलाल में। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं।
1: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को कश्मीर की गली में। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है और किस छत को भिगोना है।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में मोहरा फिल्म से ये गीत। गुनगुनाती हुई आती है फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी बाजीब से टकराई है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित रहिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।

0: Building in the worst affected districts of Sivasagar, Jorhat, Saraidev and Golaghat, most inmates of the relief camps have returned to their homes. However, around 11,000 people continue to stay in relief camps in Sivasagar district. With two more flood-related deaths reported yesterday, the death toll in the state has risen to 87. Rakesh Dole, Akashvani News, Guwahati.
1: According to the Met Department, parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, Jammu and Kashmir, Kerala, Mahe, Himachal Pradesh, Odisha and Uttar Pradesh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. Meanwhile, the flood situation in Odisha continues to improve, with the Mahanadi and other major rivers receding steadily. Delhi Traffic Police has put in place special traffic arrangements and diversions in the southern range today in view of the Chelum procession. Sharing an advisory, the Delhi Traffic Police has noted that traffic congestion and slow movement are expected on Aurobindo Marg, Lodhi Road, Ring Road, BP Marg and adjoining roads from 2 p.m. onwards. It has advised commuters to plan their journey in advance, allowing extra time. In badminton, Indian shuttlers began their campaign at the Korea Masters, a BWF Super 300 tournament in Asan today. Tushar Suvir lost to Shogo Ogawa of Japan 21-10, 21-17 in the qualifiers round of men's singles. Men's doubles pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy will meet Thai combination in the opening round today. And with that, we end this news bulletin.
2: मीडियम वेव 295.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:20 पर विधानमंडल समीक्षा, ये कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। सवा 12 बजे दोपहर में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन सुनवाएंगे। 12:30 बजे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 12:15 बजे पनघट कार्यक्रम में आस्था सिंह के स्वर में लोकगीत के अलावा चंद्रा त्रिपाठी की सोदारण वार्ता होगी सावन और कजरी। 2:30 बजे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 5:00 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे राम बाबू यादव और साथी। 5:15 बजे योजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे विष्णु राजा के स्वर में लोकगीत के अलावा सिया राम मिश्र के स्वर में रामायण पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में विनीता मिश्रा के स्वर में हम आपको भजन और गीत सुनवाएंगे। 8:30 बजे सबरस कार्यक्रम होगा और 9:30 बजे कहकशा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजनी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं सुनिए। प्रीति सोनी पुत्री रामबाबू सोनी निवासी फकीराबाद पिपरी कॉलोनी थाना सराय अकील जनपद कौसाम्बी से सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री प्रीति सोनी 23 जून 2026 से लापता है। प्रीति की उम्र है 15 वर्ष, चेहरा गोल है, रंग सांवला है, ऊंचाई है 5 फीट। ये सफ़ेद लाइनदार सलवार सूट पहने हुए हैं। इनकी सूचना मिलने पर थाना सराय अकील जनपद कौशाम्बी पर सूचित करें। एक और सूचना सुनिए। संतोष तिवारी कसौधन लाक्षाग्रह थाना हडिया प्रयागराज से सूचित करते हैं कि नंदिनी तिवारी 14 जून 2026 से लापता हैं। नंदिनी की उम्र है 19 वर्ष,

गहरा बदन है, चेहरा लंबा है, ऊंचाई है 5 फीट, रंग गोरा है, इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनकी सूचना मिलने पर लाक्षागृह थाना हंडिया प्रयागराज पर सूचित करें। एक और सूचना सुनिए। विनोद कुमार सूचित करते हैं कि श्रीमती रूपा 2 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 36 वर्ष, रंग गेहुआ है, ऊंचाई है 5 फीट 3 इंच। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 8303913026 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 8303913026। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई। ये

इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 8303913026 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 8303913026। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन राग शुद्ध सारंग

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की थी सुदर्शन राम ने और तानपुरे पर श्री श्रीकांत वैश्य ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रही हूँ, जिला प्रतापगढ़
0: जी। रोशनी जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम राज फिल्म का।
0: राज फिल्म का कौन सा गाना है?
1: आपके प्यार में हम समझने लगे।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत चुना है रोशनी जी ने राज फिल्म से, तो आपको सुनवाया जाए। रोशनी जी,
1: मैम दहिला मोह प्रतापगढ़ से, मेरी दीदी है शांति दी, मेरे दीदी है उनकी दो बेटे आशीष पाल और आदित्य सिंह, और हमारे छोटे भाई बहन है सूरज कुमार है, संदीप कुमार है, मंदिर कुमार है, सुशांत कुमार है, छोटी बहन है पूजा, और आप है सभी सुनने वाले जो समित है, हमारी मम्मी है, पापा है, बड़ी मम्मी, और क्या सुनते हैं जिनकी कॉल नहीं लगेगी यार।
0: तो चलिए रोशनी जी की पसंद का राज फिल्म का सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए।
1: अहमद हुसैन
0: जी। अहमद हुसैन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कोठी कबाब मकान का हाय मुझे मौसम दूरी।
0: लता जी की आवाज में ये गाना अहमद हुसैन जी ने पसंद किया है। तो अहमद हुसैन जी, किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ, तुफैल सलीम और क्या कहते हैं, एक हमारे यहाँ ननका है, वो भी सुरेश गाना।
0: अच्छा
1: है हमारे
0: जी जी। हाँ। तो सुनिए अपनी पसंद का रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गांव है पोस्ट गुतनी तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: जी, जिला प्रतापगढ़ से राजेंद्र जी ने कॉल की। तो राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है आया सावन झूम के
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं बदरा छाए की झूले।
0: क्या बढ़िया गाना आपने चुना है राजेंद्र जी, बदरा छाए की झूले, बहुत बढ़िया गाना है। तो आपकी पसंद का,
1: सावन भी आ गया है ना
0: जी? जी बिल्कुल,
1: बारिश के साथ।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए। जी बोलिए।
1: दोस्तों का नाम ले लें कुछ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: हमारे मतलब के श्रोता मित्रों का नाम लेना, जैसे शारदा प्रसाद प्रजापति जो मथुरा राधा से भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
0: जी जी जी।
1: हाँ, प्रभाकर तिवारी और विकास जी हैं जो
0: दादनपुर प्रयागराज। जी जी हाँ, अच्छा आपको सारे नाम याद हो गए।
1: हाँ, आर्यन।
0: हाँ
1: जी, और प्रेमचंद यादव जो हंडिया से बात करते हैं।
0: क्या बात है भाई, आपने सारे श्रोताओं के नाम भी याद करके रखे हैं राजेंद्र जी।
1: हाँ, एक राकेश श्रोता भी है जो प्रयागराज के रहने वाले हैं।
0: जी जी,
1: और काफी से महिला श्रोता भी जुड़ी हैं।
0: जी जी,
1: ये बहुत खुशी की बात है जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने फोन के माध्यम से फरमाइश भी करते हैं।
0: जी जी जी,
1: ये बहुत खुशी की बात है मैम।
0: बहुत बढ़िया बात आपने कही,
1: फोन के माध्यम से अपनी फरमाइश के माध्यम से कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने, ये तो एक मित्रता का मंच बन गया है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, सब एक दूसरे को जानने लगे हैं नाम से। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म आप हमें सुना देंगे, हम साथ साथ हैं मूवी का
0: जी।
1: उसका एक गीत है, ये तो सच है कि भगवान है, ये प्यारा सा गीत सुनवा
0: जी।
1: देंगे।
0: जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है। माता पिता के प्रति जो हमारा सम्मान है उसको ये दर्शाता है गीत, और योगेश जी ने पसंद किया है, तो आइए सुनते हैं ये।

0: 102.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम। अपना नाम बता दीजिए।
1: परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी, सावन का महीना है तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम भी है सावन को आने दो
0: जी।
1: इसमें शीर्षक ये सुनना चाहता हूँ, सावन को आने दो।
0: जी जी, बहुत अच्छा गीत चुना है। तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो।
1: जी जी,
0: तो आपकी पसंद का ये गाना तो हम जरूर सुनवाएंगे। आपको किसी के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: जी, हमारी भतीजी है नीलम, सिद्धार्थ और कौशल, और साथ में श्री जी हैं, और गुलाब चंद प्रजापति हैं, राकेश कुमार भैया मेजर से हैं, और लोकेन वर्मा जी हैं, राजू यादव, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी प्रयागराज सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: तो सुनिए सावन को आने दो फिल्म का ये गाना।

की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया

के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बबलू कुमार ने बताया कि शहर के मगरबी जोन में वाक़ पुराना लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में तकसीम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ACP सतह के अफसरान के साथ 2000 से ज़्यादा पुलिस अहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। PAC के 10 कंपनियां और एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई है। रियासत के कई अजला में इस वक्त मानसून जोरों पर है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में कल रात से शुरू होने वाली बारिश अब भी जारी है। सुबह तक बारिश जारी रहने की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने वालों और सफ़र करने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज तकरीबन पूरा दिन मौसम की ऐसी ही सूरत हाल रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट।

0: इस वक्त मानसून जोरों पर है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में कल रात से शुरू होने वाली बारिश अब भी जारी है। सुबह तक बारिश जारी रहने की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने वालों और सफ़र करने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज तकरीबन पूरा दिन मौसम की ऐसी ही सूरत हाल रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट।

0: जमुना, अरे ओ जमुना, अरे बहनी सुनते नहीं हो, हम तो कहा तोसे राम राम बहनी।
1: राम राम सत्या बहनी, और अपन पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सभी श्रोता बहनी हरन के राम राम,
0: राम। बहनी
1: हाँ,
0: ई बताओ
1: हाँ,
0: इतनी समय एक नया संगीत सुने के रोज मिल रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: ओका पूछबू कि हाँ, नहीं
1: नहीं भाई पूछब को असना सखी हो तो जरूर पूछब।
0: तो ओ संगीत है इति समय बादलन की गड़गड़ा है
1: ना? सच गो।
0: चारों तरफ देख बारिश का मौसम है,
1: हाँ,
0: है ना?
1: हाँ, हाँ,
0: और इतनी समय गीले मौसम के उपमन से मिट्टी गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू है ना, ऊपर से बादल की गड़गड़ाहट, सोचा कितना अच्छा सावनी बयार बह रही बा इतनी समय।
1: बह रही बा, और देखा तोहरे ऊपर भी बह रही बा, हमरे ऊपर भी देखा। आज हम सब जब देखा पनघट पे आवे लगे अपने,
0: हाँ?
1: तो देखा तो हूँ भीज गऊ, हमहूँ भीज गए, और हमार जितना भैया बहनी अरे बाहर निकले वाला रहे, सब लोग भीग गए। कारण ये रहा कि उही समय बारिश होई लगी।
0: हाँ? बहनी हम तो छाता लिए रहे।
1: अच्छा अच्छा,
0: मुना पता नहीं का है,
1: कितना भी छाता ला सत्या,
0: हाँ?
1: लेकिन जो बौछारी मारत है चारों ओर से, ओसे
0: हाँ?
1: जौन बटे हम ठीक बाटे, ऊपर तक तो सुरक्षित है, लेकिन पैर वगैरह देखा भीगिन जाते हैं।
0: भीगिन जाते हैं।
1: तो जौन बाटे ये बतावे, अब जैसे बरसात का मौसम हवे की है, तो यहाँ समय देखा जैसे क्यों भीग जाता या क्यों चाहे कोनो भी बात हो, तो कुछ न कुछ देखा ओकर परिणाम सामने आ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहती
1: तो
0: हो।
1: काहे कि जब आदमी भीगत है तो कतो के हो के ज्वर बुखार हो जाता, हाँ कोनो न कोनो संक्रमण जौन बा भैया बहनेरन के घेरी लेत है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: देखा जैसे कि बारिश आई और बारिश बरस के जब निकल जाता ना,
1: हाँ हाँ
0: ओके बाद देखा कितनी उमस होता।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल, हाँ
0: उमस का समय होता, और जो कहूँ संक्रमण में जैसे इतनी समय बहनी हरे खेते में, भैया हरे खेते में बेहन लेना लगावत है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: कीचड़ में ज्यादा देर पैर रहे से,
1: हाँ हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो उंगलियन के बीच में देखा
1: देखो पोर
0: कैसे,
1: जोन रहा था, सब
0: हाँ,
1: सड़ी जाता
0: सड़
1: है।
0: जाता, मन की खूब खजुली होए लगत है। तो
1: हाँ।
0: लोग रात में आवत थी तो गरम गरम तेल फिटकरी कपूर भर भर के सर पर
1: लगावत
0: करती,
1: थी।
0: ताकि जो है खुजली में आराम मिले।
1: बिल्कुल, और देखा सत्या की ई तो जैसे पानी में आदमी भीगत है तब होता है, लेकिन आजकल जौन ई मधुमेह और उच्च रक्तचाप जौन बढ़ चला हुआ, इससे कितना भैया बहनी हरे परेशान हैं।
0: बिल्कुल बहनी, ई तो आजकल ऐसन हो गया बा कि देखो हर घर में एकाक सदस्य तोहका ऐसन मिलिन जाई,
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ हाँ
0: कि जेके ई समस्या रहत है।
1: समस्या
0: और
1: रहता है,
0: देखा
1: और मधुमेह का मने दवा या जौन रक्तचाप को दवा जरूर खाता, जेके बीपी का होते हैं।
0: हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल, देखा बहनी ई तो समझा शरीर में

0: जैसे रहता ही है लेकिन उभार मार
1: उभार
0: देता है
1: मारती।
0: ना।
1: तो जब एकर
0: और
1: बात चली तो हम सोचत रहे सत्या की कसना आज चला यही विषय पे बत कही बहनी हरन से कह लिया जाए।
0: बिल्कुल बहनी,
1: हाँ तो देखा सत्या, एक कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत आज भी उतनी ही मैंने सत्य है सत्या जितनी सदियों पहले रही है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कह रही हो बहनी।
1: देखा धन पद प्रतिष्ठा और सफलता तभी सार्थक है जब हमार शरीर स्वस्थ है, और आधुनिक जीवन शैली, अनियमित खान पान, शारीरिक निष्क्रियता और बढ़ते मानसिक तनाव के कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां तेजी से बढ़त हैं, और ये बीमारियां धीरे धीरे शरीर के भी प्रभावित भी करत हैं।
0: बिल्कुल सही कहती हो जमुना बहनी। देखा जमुना, एक एक खातिर प्रमुख कई कारण हो जाती
1: हाँ
0: हैं।
1: का कारण
0: वो
1: बनी।
0: कारण के जब हम लोग अनदेखा कर दी थे
1: हाँ हाँ
0: तो उस समस्या जोन बटे आगे आवे लगत है। सबसे बड़ी जोन बटे कारण अगर देखा जाए
1: हाँ
0: तो आजकल जोन बटे असंतुलित एवं अत्यधिक जोन तेल
1: तैली
0: युक्त
1: भोजन।
0: भोजन है ना। देखा लोग स्वाद के पीछे ऐसे भागथिन ऐसे भागथिन कि वो अपने स्वास्थ्य के अनदेखा कर
1: जी
0: देथिन।
1: जी जी
0: अच्छा, एकर प्रभाव एक के दिन में तो पड़त नहीं
1: नहीं
0: है
1: नहीं
0: ना।
1: नहीं
0: एकर प्रभाव कई दिन में दिखा था तो मनी स्वाद से खात रहता
1: तो धीरे
0: है।
1: धीरे धीरे धीरे जोन बटे वो जोन बा सामने आवत है।
0: बिल्कुल, ऐसे जरूरी है कि जो है खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान देवे है ना, और अत्यधिक नमक चीनी का सेवन न करें। देखा जमुना बनी, हम तो का बताई, ई जैसे जैसे उम्र बढ़त है तो एक 40 वर्ष के पास पहुँचत पहुँचत
1: हाँ हाँ
0: इंसान के एकदम संतुलित आहार लेवे के चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: काहे कि जैसे ऊपर से हमार लोग का आँखी में चश्मा लग गए, बाल पकी गए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: झुर्री पड़ गए, तो पता चलता है कि उम्र बढ़ी
1: हाँ,
0: होगा।
1: लेकिन शरीर के अंदर का हो तो
0: हाँ
1: हम तो नहीं देख सकत
0: बिल्कुल,
1: है।
0: यह तरह से हमारे शरीर के अंदर जोन पाचन और पेट के जो है, चाहे लीवर हो चाहे किडनी में आँत हो, ये सब जोन बटे यहू तो उम्र के प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऐसे जो दिन रात हर समय ये अपन कार्य कर रहा
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: इसलिए
1: जैसे
0: सर
1: पहले तेज करत रहे तो जैसे जैसे उम्र बीतत तो वैसे
0: कार्य
1: वैसे
0: क्षमता कमजोर पड़े
1: कमजोर
0: लगत।
1: पड़े लगत है।
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: ऐसे जरूरी है कि अत्यधिक नमक का सेवन, चीनी का सेवन
1: कम
0: या
1: कर कम
0: भारी
1: करें।
0: मसाला ये सब का और जो है कम कर दें। ओके, साथ साथ देखा आजकल बहुत तेजी से फैल रहा बटे का
1: मोटापा।
0: मोटापा। देखा चाहे वो बहनी हो चाहे भैया हो है ना, ये अपने आप ये जाना तो का कारण है। आजकल जरूरत से ज्यादा निष्क्रियता शरीर में आ जा रहा।
1: बिल्कुल
0: देखा
1: बिल्कुल
0: पहले का रहा, लोग साइकिली से ज्यादातर आवत जात
1: हाँ
0: रहन
1: हाँ हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो व्यायाम कमर से लेके पैर पे सबका हो जात रहा
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: हाँ
0: और लेकिन आजकल लोग थोड़ी दूर के लिए भी जोन बटे
1: साइकिल
0: मोटरसाइकिल
1: मोटरसाइकिल
0: कार
1: उठाई
0: इन
1: लेते
0: सबका इस्तेमाल करती तो जेके कारण शारीरिक निष्क्रियता हो जाता, 4 कदम पैदल नहीं चलते। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आनंद में डूब करके धूम्रपान का सेवन करे
1: तंबाकू
0: लगथिन,
1: का। हाँ
0: तंबाकू का सेवन करे लगथिन,
1: जी जी
0: शराब का सेवन करे लगथिन,
1: बिल्कुल
0: जो ये सब हमारे शरीर के लिए इतने
1: नुकसानदायक
0: समय
1: है।
0: हाँ उच्च रक्तचाप बीपी इन सब के निमंत्रण पत्र है ये एक तरीके
1: बिल्कुल
0: से
1: बिल्कुल
0: है
1: बहनी
0: ना।
1: हाँ हाँ और देखा सत्या, देखा लोग कहते हैं कि अगर नींद पूरी नहीं होते और जौन बाटे आदमी बहुत ज्यादा सोचत है तो ऐसे भी ये दोनों बीमारी अपन पैर पसारथिन।
0: बिल्कुल
1: ठीक
0: सही
1: ना।
0: कहती हो।
1: और कभी कभी लोग कहते हैं कि ये पारिवारिक इतिहास वंशानुगत चलत है, जैसे हमरे बा पिताजी के बा पिताजी के पिताजी के बा, अगर उनके सबके बा तो हमें भी स्वाभाविक बा कि होबे करे।
0: बिल्कुल
1: तो देखा सत्या, एकर बचाव ही सबसे प्रभावी उपचार है। देखा इमे काबा हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, साबुत अनाज हैं, दालें हैं, अंकुरित अनाज हैं, और कम वसा वाला भोजन नियमित रूप से लेवे के चाहे। और जो तू बताओ ना कि तली भुनी चीजें, मीठे जोन पेय और खराब खाद्य पदार्थों का सेवन जोन बा हमें कम से कम करे के चाहे,
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहती हो। देखा एक बात और है कि प्रतिदिन कम से कम
1: हाँ
0: 30 से 45 मिनट तक
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: लोगन के शारीरिक थोड़ा ऐसा व्यायाम रहे जिमन शरीर उनकर काम करे, चले फिरे
1: हाँ हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: कहे के मतलब योग करें और अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी शारीरिक गतिविधियां अपना लें
1: अच्छा
0: हाँ। जैसे व्यायाम में शरीर के सक्रिय रखत है, उससे रक्तचाप का आपके जोन बटे शरीर का शर्करा जो है
1: हाँ
0: नियंत्रित रखे
1: मने
0: में
1: रक्त
0: मदद करत
1: शर्करा।
0: है।

0: हाँ
1: हाँ
0: मदद करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कोनो चीज का काम देखो, आजकल व्यायाम में भी बहुत से आसन ऐसन हैं जो जमुना बहनी अगर ध्यान से देखा, ऐसे गोल गोल जैसे पुराने समय में हम लोग
1: हम
0: जांता
1: चक्री,
0: चक्री चलावत रहे,
1: हाँ हाँ
0: आज
1: हाँ
0: व्यायाम में ऐसे ऐसे हाथ डुलावत है ना। और देखा ऐसे ऐसे हाथ ऊपर नीचे, पहले हम लोग ओखरी में काड़त रहे तो ऊसल बार बार
1: तो
0: ऊपर
1: उसे,
0: नीचे
1: हाँ
0: आवत
1: तो
0: जात
1: शरीर,
0: रहा है
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और जब आप इतना काम ये सब करबू तो खुद ही अपनी आप तेज तेज आपका सांस ऊपर अंदर बाहर करे, काहे के
1: बिल्कुल
0: शरीर
1: देखा,
0: व्यायाम
1: बिल्कुल
0: करते।
1: काहे कि देखा सत्या, पहले ये सब बीमारी के कोनो अता पता नहीं रहा, काहे कि पहले बहनी अरे भैया अरे इतना काम करत रहन, लेकिन अब देखा, पहले देखा लोग जोन बड़ा हल से खेत जोतत रहन, अब हल बैल का कतौ पता नहीं, अब ट्रैक्टर से खेत जोताए लगा
0: बिल्कुल देखा। और
1: तो,
0: सबसे बड़ा ठीक है, समय बचाव के लिए ये सब साधन को उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग जो व्यायाम में आजकल वही वही मुद्रा ज्यादातर आदमी बनावत है जो पहले हम लोग काम करते हैं।
1: करत रहे।
0: अब जैसे तेज सांस ल अंदर की ओर फिर बाहर की ओर छोड़, अब घर में बैठे हैं तो अंदर सांस ल बाहर छोड़, यह जब आप घूम घूम के कोना कोना पोछा झाड़ू पोछा झुक के करे लगा तो देखा कितना आदमी थक जाता तो खुद ही सांस जो है
1: ऊपर
0: तेज
1: नीचे
0: तेज
1: कर,
0: ले लगा
1: बिल्कुल
0: था तो
1: बिल्कुल,
0: होता।
1: तो बिल्कुल सही कहा था सत्या कि स्वस्थ और सभी वजन भी थोड़ा सा कम करे के चाहे, और साथे साथे ध्यान प्राणायाम योग संगीत पुस्तक पठन या परिवार के साथ समय बितावे, जैसी गतिविधियां मानसिक तनाव के कम करत है, हाँ, और पर्याप्त और नियमित नींद भी बहुत ही जरूरी
0: जरूरी
1: है।
0: है।
1: एकरे साथे साथे सत्या समय समय पर रक्तचाप और रक्त शर्करा का जांच जरूर करावे के चाहे, विशेषकर यदि परिवार में इन बीमारियों का इतिहास रहा बाटे, तो या तो आपका आयु 40 के पार हो गया बाटे, है ना।
0: देखा यदि इतनी समय यदि मधुमेह है या रक्तचाप का पता चल जाता बहनी
1: हाँ
0: तो ओका हम कही था कि अनदेखा बिल्कुल न लें कि अरे चला आज ऐसन बढ़ावा काल ठीक हो जाए, ऐसन बात नहीं ना। मैं नियमित रूप से एकर जोन बटे दवा
1: दबले,
0: लें
1: हाँ
0: और अच्छे खासे जो है अपने मर्जी से नहीं, डॉक्टर के बिना सलाह से कोई दवा न लें, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल,
0: काहे कि आप एक चीज का दवा लेता तो वो दवा का प्रतिक्रिया कभी कदा ऐसा शरीर के अंदर पड़ जाता कि जो आपके दूसरे अंगन के नुकसान
1: नुकसान
0: पहुंचावा था।
1: पहुंचावा था। तो सही कहा था कि देखा सत्या की स्वास्थ्य की ही रक्षा ही जीवन का सबसे बड़ी सुरक्षा है, सकारात्मक सोच अपनावें, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से दूर भगावें और स्वस्थ सुखी जीवन का आनंद उठावें,
0: देखा
1: है
0: जब इतना अच्छे से शारीरिक जानकारी के बारे में लोगन के बहनी हरे सुने न अपने के कैसे रक्तचाप के
1: हाँ।
0: बचा नियंत्रित रखे हैं। रक्तचाप एक ऐसा चीज होता बहनी यहीं से बीमारी शुरू होता,
1: शुरू
0: अगर
1: होता,
0: आपका रक्तचाप नियंत्रित बात है तो शुगर भी धीरे धीरे
1: हाँ
0: खान पान अगर आप सही रखा था तो वो नियंत्रित रहता
1: बिल्कुल। तो
0: है
1: देखा
0: ना।
1: बातचीत, देखा सत्या होत रही तो चला, हम सोचा था बहनी हरन के जौन बैठे कजरी सुनाए दिया जाए संगीता राय बहनी से, तू सुनो बहनी हरन भी सुने।
0: हाँ हाँ कहे नहीं।

0: घिर घिरे आई सावन की पदरिया ना,
1: जानत हो सत्या?
0: हाँ?
1: पानी बरसत रहे और बादल गरजत रहे तो वहाँ समय कजरी का कुछ दूसरा ही महत्व हो जाता
0: है। बिल्कुल सही कहती हूँ। हर बहन के मन में उल्लास रहा था कि सावन मास में अपने मईके चला जाए, है ना,
1: और वहाँ जगह पेड़े में झूला डाल के
0: अपने सखी सहेलियन से मिल के आनंदित हो के बढ़िया हरे हरे चूड़ी हरी हाथों में मेहंदी है ना लगा के सखियन के साथ अटखेलियन खेले। बहने ये सब तो दिन जैसे जमाना हो गो, बस सपने का बात हो,
1: सपने की बात होगी। तो जब ये सावन बात चलाता है
0: हाँ?
1: तो देखा आज अपने कार्यक्रम में सुधारण वार्ता है सावन और कजरी
0: हाँ?
1: और वार्ताकार हैं चंद्रा त्रिपाठी बहनी। तो चला जो बस सुना जाए।
0: बिल्कुल।
2: आषाढ़ मास जैसे ही मानसून आता है, बरसात होने लगती है, सावन का इंतजार हम लोग करने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली, पृथ्वी पर जैसे हरा चादर प्रकृति ने बिछा दिया हो, मन बहुत ही आनंदित हो जाता है और हम सब लोग सावन के गीत गुनगुनाने का मन करता है, गुनगुनाने लगता है।

रहते हैं। खेत खलिहानों में भी बहुत सुंदर लगता है, उधर भी कुछ गीत गुनगुनाने की आवाज़ आती रहती है। कजरी जो है वो एक प्रकार से लोकगीत की गायन शैली है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सभी जगह प्रचलित है, परंतु मिर्जापुरी कजरी एवं बनारस में गाई जाने वाली कजरी और भोजपुरी कजरी ये सब सावन में ज़्यादा गाई जाती हैं। सावन में प्रकृति सौंदर्य है और इसको शिव जी का महीना भी माना जाता है, तो शिव जी की भी कजरी है और शिव जी की आराधना पूजा कर गीत गाए जाते हैं। और दूसरी कजरी जो हमारी है उसमें महिलाओं के विरह का व प्रेम का दोनों तरह का बताया जाता है। अगर पति परदेश में है तो पत्नी का वियोग, जैसे एक कजरी गीत है हमारा, बर

नहीं। इसी तरह और भी कजरी है। कजरी की उत्पत्ति कजरा, जो आंखों में डालते हैं काजल, अर्थात काले काले बादल सावन में छाने लगते हैं। कहते हैं कि आसमान में बदरिया छा गई है, घेर आई है, आज तो पानी बरसेगा, पानी बरसने वाला है। मन आनंदित हो उठता है, क्योंकि गर्मी के बाद जब बरसात का ये मौसम आता है तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और लोकगीतों की यह परंपरा बहुत ही पुरानी है, हमारी दादी परदादी के समय से चली आ रही है। आज भी हम उसे संजोए हुए हैं। इस बात की बहुत खुशी है, जब बादल छा जाते हैं और बादल घिर जाते हैं, काले काले दिखाई देते हैं, तो उस पर एक कजरी है, घेरे घेरे आई।

सुनी सजहरिया ना घेर घेर आई सावन की बदरिया ना। इस तरह कजरी गीतों के माध्यम से बहुत विरह वेदना दिखाई देती है, हमको एहसास होता है, और यह हम लोग अपनी सखी सहेलियों से भी साझा करते हैं, मन का बोझ हल्का कर लेते हैं। जिनके पति पास में होते हैं उनकी भी खुशियाँ कजरी में हमें दिखाई देती हैं। जैसे एक कजरी गीत है, पिया मेहंदी हो पिया मेहंदी मंगई द मोती झील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी हो पिया मेहंदी मंगई दे मोती झील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आवा छोटी नंदी से पिसावा

दी मंगाई दे मोती झील से। इस तरह सावन में त्यौहार मनाए जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, झूला डाला जाता है,

और बहुत से त्यौहार आते हैं, रक्षाबंधन, हरियाली तीज, नाग पंचमी, सखी सहेलियां सब झूला झूलती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, और लड़कियां अपने मायके भी आती हैं, हरे हरे परिधान, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, और सजने संवरने का एक मौका भी मिलता है। सखी सहेलियाँ समूह में एकत्र होकर ढोलक मंजीरा लेके उसके साथ कजरी गाती हैं। एक मिर्जापुरी कजरी है, चाहे

एक बहुत ही प्रचलित कजरी है, ननद जब मायके आती है तो भाभी की ननद की कुछ वार्तालाप होती है, तो भाभी कहती हैं अपनी ननद से, कैसे खेलन जई हो कैसे खेलन जई हो सावन में कजरिया।

सहेली तू तो जात है अकेली, तुही संग ना सहेली, छैला रोक लई है हो, छैला रोक लई है तोहरी डगरिया, बदरिया घेरे आई नदी। इसी तरह सावन में बादलों का वर्णन और ये गाने का, कजरी गीतों का वर्णन बहुत दिखाई देता है। हमारे बुंदेलखंड में भी महोबा में जैसे कजली, कजरी को कजली भी कहते हैं, उसका मेला भी लगता है। और एक तरह से कजरी जो है वो कजरिया भी उसको बोलते हैं। वो मिट्टी के बर्तन में जो ज्वारा बोया जाता है, फिर वो सींचा जाता है और पवित्र स्थान में इसको रखा जाता है। उसको सींच के फिर महिलाएं इनको अपने सिर पर रख कर, एक हफ्ते बाद जब वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। आला उदल के समय से ये मेला हमारे बुंदेलखंड में लगता चला आ रहा है और इस पे कजरी भी बनी हुई है। ये शुभकामनाओं का एक संदेश होता है जो बहने भाइयों को वो जो जवारा होता है वो भेंट में देती हैं। बहुत लोग इसे कान के ऊपर भी लगा लेते हैं, रास्ते में सब गायन ढोल आदि के साथ समूह में गान करती हैं महिलाएं। दो लाइनें और कजरी की हैं, गंगा जी के, यमुना जी के ऊपर। भरे आई गंगा उमड़े आई यमुना, कैसे धना जई हो नैहरवाना। भरे आई गंगा उमड़े आई यमुना, कैसे धना जई हो नैहरवाना। इसी तरह और भी लोकगीत हैं। ब्रज में भी कजरी गाई जाती है और उसका एक मल्हार राग, उसका बहुत प्रचलन है। पूरे सावन के माह में भक्तिपूर्ण वातावरण रहता है, राधा कृष्ण के गाने गाए जाते हैं, कजरी गाई जाती हैं और झूले, और भगवान जी को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाकर ये दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कजरी है अरे।

अरे इस तरह देखा जाए तो बहुत सुंदर सुंदर कजरी गीत हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं, और ये पुरानी परंपरा कजरी गीतों के माध्यम से इतना सुंदर वातावरण चारों ओर रहता है, सभी जगह दिखाई देता है। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि इस संस्कृति को संजो कर रखा जा रहा है, और हमें इस पर बहुत बड़ा गर्व है। एक और कजरी है, अरे राम।

0: की डारी, अरे रामा सखियन की मुस्कान लगे प्यारी, बदरिया छाई रे कारी। और जो सावन मास हमारा है ये भोले बाबा का महीना कहलाता है, शंकर जी को, क्योंकि कांवड़िया लोग हमारे जो बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करते हैं, गंगा जल लेकर हरिद्वार, उज्जैन, काशी, और फिर वो समर्पित करते हैं। और सावन का महीना समुद्र मंथन के कारण भी प्रसिद्ध है। जो विष निकला था उसको शंकर जी ने अपने अंदर ले लिया था, तो कहते हैं कि शंकर जी को इसीलिए जलाभिषेक किया जाता है क्योंकि उनकी तपन इतनी अधिक बढ़ गई थी जब उन्होंने अपने अंदर विष ले लिया था, तो इससे उनकी तपन कम करने का हम लोगों का जो श्रद्धा भक्ति है कि बेल पत्र चढ़ाना, धतूरा वगैरह चढ़ाना और रोज़ गंगा जल से स्नान कराना, इसलिए सावन का महीना बहुत ही प्रसिद्ध है। सावन मास में हरियाली भी अपनी चरम सीमा पर रहती है और किसानों की जो फसल है वो किसान भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो खुशी खुशी अपनी बुआई करते हैं। महिलाएं भी अपने जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब सावन के महीने में करते हैं। कजरी का इतना अधिक महत्व है और सावन में गुरु पूर्णिमा भी पड़ती है, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। और शंकर जी के जल चढ़ाने का जो महत्व है उसको बहुत ही भक्त लोग श्रद्धा के ऊपर करते हैं। सावन के सोमवार का व्रत भी रहते हैं, इसलिए देखा जाए तो सावन का महीना हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है और इसमें गाना बजाना, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी का महत्व है, दिखाई देता है।
1: हाँ, देखा बहनी, चंद्रा त्रिपाठी बहनी जान बा कितना फरियाए के
2: बताएं। देखा सही बात है कि सावन में कजरी का वाकई महत्व बढ़ जाता है,
1: बिल्कुल
2: है ना। सावन में चारों तरफ हरा हरा और जो है वो मन जो है बहनी हरे अपने मई के आवाथिन, गीत गौनई से अपने वो भाव के प्रकट करथिन,
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और हमरे यहाँ भी देखा नीमी के पेड़े पे झूला पटोहा पड़ी है बटे, और लड़किया जौन बटे पेंग मार मार के झूला झूलो शुरू कर दे।
2: बिल्कुल, देखा ये ऐसा पल होता बहनी हरन का जो सावन मास में बहनी हरे आवाथिन, ऐसा समय होता कि उस समय में जौन बटे बहनी हरे अपने भाव के बतावथिन गीत गौने के माध्यम से, और जीवन भर प्यारा सा पल जौन रहा था अपने सखी सहेलियन के जीवन भर यादगार रहा था।
1: तो देखा जब इस कजरी के बात चलते ही बात, चलो अपने बहनी हरन की एक कजरी और संगीता बहनी से सुनवा जाए।

0: देखा हर राज्य में झूला का महत्व है बहनी
1: भाई, जब सावन और कजरी हाँ और झूला
0: बिल्कुल। मुने एक बात बतावा,
1: हाँ
0: कलियाम देखा है तनी ढेर सारी लौकी बहनी, तू तोड़े लिए चली जात रहो, का वो लौकी के दुकान में भजवावे के रहा दुकानी खातिर या फिर घरे के कोनो इस्तेमाल रहा?
1: नाही देखा सत्या
0: कि
1: जब लौकी अपने घरे भावा था अगले बगले वाले भी कहते हैं अरे जमुना तो रही लौकी भाई बैठे तो हम सबके दा कुछ ना कुछ बनाई तक ए, अपने मने इस्तेमाल के लिए दूसरे को बटहू भी ना लिया।
0: अच्छा अच्छा
1: तो जाना तो हम लई गए का बनवा
0: का बहनी,
1: हम बनाए लौकी के जैम।
0: अरे बहनी हम तो लौकी के सब्जी लौकी कराया था कोफ्ता, तू तो जैमो बनाए डालू।
1: हाँ,
0: अच्छा ये बताओ बनाऊ कैसे पहले?
1: अच्छा तो बनाए और लई के आए भी बाटी।

0: अरे वो का तो हम खात रहा, पहले विधि बतावा।
1: देखा देखा सत्या की लौकी, देखा जौन जैम होता स्वादिष्ट होए के साथ साथ घर पे आसानी से बन जाता है।
0: अच्छा
1: तो इमें देखा सामग्री का लगत, जैसे तू आधा किलो के लौकी ले लो और 300 से 350 ग्राम चीनी, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस ले ले और आधा चम्मच छोटा चम्मच इलायची पाउडर ले ले।
0: अच्छा
1: और अब तोरे अगर इच्छा हो तो थोड़े कटे हुए बादाम या पिस्ता वगैरह रख ले।
0: हाँ हाँ मेवा।
1: हाँ तो अब विधि का हो यो जान ल
0: बिल्कुल
1: कि सबसे पहले तू लौकी के धोए के खूब अच्छी तरह छील ल। छीले के बाद और जिसे लौकी थोड़ा मुलायम रहे और ओकरे अंदर जोन थोड़ा बहुत बिया हो ओके निकाल के
0: अलग
1: अलग कर दो और के फिर कद्दूकस से कस ले।
0: हाँ।
1: कद्दूकस करे के बाद लौकी के 3 से 5 मिनट हल्का उबाल ल और फिर ओकर पानी जोन बा निचोड़ के अलग कर दे।
0: अच्छा
1: ठीक समझ में आवा तो है।
0: हाँ हाँ समझ रही बहनी।
1: फिर एक भारी तले का कढ़ाई जेकर पेंदी खूब मोटी हो ओमे जौन बा लौकी के डाल द और 2-3 मिनट तक ओके भुने ल। भुने के बाद अब ओमा चीनी डाल द और चीनी जौन लौकी डाले हौ जब चीनी डलबू तो पानी छोड़बे करे तो ओके मध्यम आँच पर लगातार धीरे धीरे धीरे धीरे चलावत भाई पकावत रह। जब मिश्रण तब तक पकावा जब तक वह जैम जैसी गाढ़ी स्थिरता में ना आ जाए, जैसे हम सब सेब को बनाए थे सब चीज़ को बनाए थे तो वैसे जब खूब गाढ़ी हो जाए तब जौन बाटा एका लगभग 20-30 मिनट तक जौन बा पकावत रहे जब से ओकर पानी न छुराई जाए। अंत में नींबू का रस और इलायची पाउडर डाल के 2 मिनट और पकावा, चाहे तो कटे हुए मेवे भी उनमें मिला दे। अब जैम तोहार पूरी तरह से तैयार बा, ओके ठंडा कर दे और एक प्लेट में जैसे ओके देख बाकी सही बना कि नहीं तो एक मैंने प्लेट पे थोड़ा सा जैम डाला, यदि उंगली से ढकेला वो आसानी से ना खस गए तो समझे कि तुम्हारा जैम बिल्कुल तैयार बा। खुद खा परिवार के भी खियाओ
0: और देख स्वास्थ्यवर्धक भी रहे।
1: हाँ
0: तो देख जब तू ये बताऊ तो हमार मन करत अटे कि खाए के तो हम खा लिया तू दीहु।
1: हाँ।
0: मुने अपने खाए से नहीं जब पूरा परिवार खाए।
1: बिल्कुल
0: अब हमहू घरे जाब और बनौब।
1: हाँ।
0: अब हमार बहनी हरे भी सुने हुई हैं।
1: हाँ।
0: तो जरूर एक फायदा उठाई है,
1: है ना? चला जौन अब सब कुछ तो हो गए लेकिन बहनी हरन के चले संदेश भी सुनवा दिया जाए।
0: चला
1: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजे।
3: हमार ईमेल एड्रेस है
4: पनघट प्रोग्राम
1: @gh। हाँ बहनी देखा जौन बटे संदेश जौन बा बनी हरे सुन लीहन।
0: देख संदेश सुन लीहन और हम लोगन के इंतजार भी रहे कि वो संदेश सुने के बाद बहनी हरे का प्रतिक्रिया करती है ना।
1: हाँ तो देखा अब जो का घड़ी जौन बा इशारा करता
0: घरे चले
1: घरे चलेगा तो चलो बहनी हरन से विदा लेन जाए। राम
0: राम, राम बहनी हरन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी,

0: पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिक

0: देखिए तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
2: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
3: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
4: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च

0: और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हॉर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए अब सुनते हैं NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो एआई या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी
1: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
1: और तो और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
2: जी
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
2: जी
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
2: ये सब बहुत आकर्षक लगता है लेकिन श्रोताओं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: जी
2: हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं।

0: सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
1: जी,
0: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
0: जी,
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
1: जी,
0: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
0: जी,
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
1: जी,
0: एआई हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी,
1: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में

0: उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे। आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
5: सर मैं इशिता।
6: मैं हूँ चेताली।
7: मैं शुभेंदु।
8: और मेरा नाम है इंदु।
9: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
5: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
7: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
9: सर फिर क्या होता है?
4: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
4: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
0: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
5: वाह, कितनी सुंदर बात है।
4: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
3: पौधा।
4: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
3: उल्टा?
4: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
4: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
7: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
5: जी सर।
4: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
5: रसपान कैसे करते?
4: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
5: जी सर।
4: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
5: अच्छा अब समझ आया।
4: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
3: जी सर।
6: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं।
5: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है, यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
8: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
9: देखो इतना बड़ा पेड़।
7: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
3: अरे यहाँ तो कितने सारे पेड़ पौधे हैं।
6: और ये मशीन क्या है? चलो चलो, चलो, चलो सर से पूछते हैं।
4: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
9: माइक्रोस्कोप।
4: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
5: जी सर।
4: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो। देखो बेटा देखो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
7: अरे वाह मुझे तो इसमें बहुत सारी

0: छोटी छोटी नलिया दिखाई पड़ रही है।
1: हाँ शाबाश।
2: हाँ नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
1: हाँ आओ आओ आओ।
2: मुझे भी देखना है।
1: देखो क्या दिखाई दिया?
2: इसमें तो बहुत सारी नलिया हैं।
1: शाबाश बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
4: पाइप?
1: हाँ यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
3: अच्छा तो ये बात है।
1: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
0: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
1: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
4: नहीं सर।
1: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले? शुभेंद्रु तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
0: अरे वाह कितना अद्भुत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
4: जी सर।
1: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
3: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
1: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
0: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
1: हाँ
0: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
1: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा मनुष्य ही नहीं पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
1: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
2: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम भी नहीं होते।
1: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत?
4: बहुत बढ़िया।
1: अब से एक काम जरूर करना।
4: क्या सर?
1: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
4: थैंक यू ट्री।
1: शाबाश।
5: तो साथियों अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे?

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुश शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजने को हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं धरती के गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रामबाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वरों में सुनिए देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम। हम आपको सुनवा रहे हैं रामबाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लाचारी स्वर रामबाबू यादव और साथियों का।

अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत कार्यक्रम में रामबाबू यादव और साथियों के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे, युववाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: कभी नोटिस किया है? जिंदगी में कुछ चीजें बिना नोटिफिकेशन के भी रोज अपडेट होती रहती हैं।
1: जैसे?
0: जैसे हमारी सोच। कल जो बात इम्पॉसिबल लगती थी आज वही नॉर्मल लगने लगती है। कल जिस चीज से डर लगता था आज उसी का सामना कर लेते हैं।
1: और कभी कभी तो एक छोटी सी बात, एक छोटा सा किसी दोस्त का एडवाइस, या एक टीचर की कही गई कोई बात, या कोई एक्सपीरियंस हमारा पूरा नजरिया ही बदल के रख देता है।
0: एग्जैक्टली। दोस्तों, जिंदगी की ये जो इनविजिबल लर्निंग है ना, ये किसी क्लासरूम के अटेंडेंस शीट में रजिस्टर नहीं होती, लेकिन हमें अंदर से ज़रूर बदल देती है।
1: बिल्कुल। और इसी बदलते हुए नज़रिए, नए ख्यालों और युवा जज्बे के साथ आप सुन रहे हैं युवाणी। मैं हूँ सुष्मिता श्रीवास्तव और आज हमारी इस महफिल में, यानी युवाओं की महफिल में, करेंगे हम बहुत ढेर सारी बात और ऐसे ही कुछ जो अंदाज हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उनको महसूस करेंगे।
0: और मैं हूँ अंजलि श्रीवास्तव। तो चाय की चुस्की हो, हॉस्टल की बालकनी हो, कोचिंग से घर लौटने का सफ़र हो, या फिर शाम की हल्की हल्की हवा, अगले कुछ पल हम सब साथ बिताने वाले हैं।
1: और आज की शाम शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो शायद हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंजलि हमें नहीं लगता कि हम रोज़ इस पर बात करते हैं, या बात करते हैं तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी हैं।
0: बिल्कुल। सोचिए दोस्तों, जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे सबसे पहले क्या सिखाया जाता है?
1: ABCD या काखा गागा?
0: हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉपी में सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं, सपने भी भरने लगते हैं।
1: फिर शुरू होती है टेस्ट की रेस, असाइनमेंट्स का प्रेशर, अटेंडेंस की टेंशन और रिजल्ट की एक्साइटमेंट।
0: और एक्साइटमेंट रिजल्ट की, सुष्मिता, आर यू श्योर?
1: एट टाइम्स, मे बी व्हेन वी हैव परफॉर्म्ड वेल।
0: और बीच में वो वाली लेजेंडरी लाइन, पढ़ लो बेटा वरना जिंदगी भर पछताओगे, ये डायलॉग तो लगभग हर घर की टैगलाइन है ना।
1: और लेकिन कभी सोचा है अंजलि कि जो चीजें हम जिंदगी के 15 से 20 साल जिन्हें सीखने में लगा देते हैं, आखिर उनका असली मकसद होता क्या है?
0: क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्जाम्स पास करना है, या फिर उसके पीछे और बड़ी कहानी छिपी है?
1: इसी दिलचस्प बात को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, लेकिन दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज की चर्चा हो सकती है कि आपके जीवन के ना कोई नए एंगल से ये सोच आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि अंजलि कई बार जो टॉपिक्स हम अपने से सोचते हैं ना, लेकिन उसका कोई नया नज़रिया जब मिल जाता है तो हमारी जो सोचने का जो हमारा नज़रिया है वो भी बदल जाता है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है।
0: एग्जैक्टली। सो विद दिस पॉजिटिव थॉट लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस सफ़र की जो स्कूल के पहले दिन से शुरू होता है और ज़िंदगी में हर मोड़ पर किसी न किसी फॉर्म में चलता रहता है।
6: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के सही मायने और उद्देश्य के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम रोज़ टच करते हैं, मगर कभी इसके असली मायने का एक जो डिस्कशन है या इस बारे में कायदे से सोचते नहीं।
5: बिल्कुल। और अगर आज मैं आपसे पूछूँ कि शिक्षा क्या होती है, तो शायद कई लोग कहेंगे स्कूल, कॉलेज, डिग्री, मार्क्स या जॉब।
6: और ये जवाब गलत तो नहीं है, लेकिन क्या ये जवाब पूरा है?
5: शायद नहीं, क्योंकि अगर शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित होती तो जिंदगी के सबसे बड़े सबक क्लासरूम के बाहर क्यों मिलते? जैसे याद है सुष्मिता, रंग दे बसंती में आमिर खान का वो डायलॉग रहता है ना कि कॉलेज दे गेट दे इस तरफ हम लाइफ को नचाते हैं, तो दूजी तरफ लाइफ हमको नचाती है।
6: बिल्कुल, सो ट्रू अंजलि। और पहली बार किसी गलती की जिम्मेदारी लेना, किसी की मदद करना बिना किसी बेनिफिट के बारे में सोचे, किसी हार के बाद फिर से खड़े हो जाना और किसी दूसरे

0: दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करना, यही तो है शिक्षा का असली मतलब। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि समझ का विकास करना।
1: आज के डिजिटल ज़माने में दोस्तों इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। लेकिन इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन में फ़र्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा अंजलि, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें बताती है कि क्या है, जबकि जो एजुकेशन है वो हमें सिखाती है कि क्यों है और इसका यूज़ कैसे करना है।
1: एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी इंसान को बहुत सारे फैक्ट्स याद हैं, लेकिन वो सच और र्यूमर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता।
0: तो ऐसे में उसके पास जानकारी तो है, लेकिन शिक्षा का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग अभी भी इनकम्प्लीट है।
1: अपार्ट फ्रॉम दिस डियर लिसनर्स, एजुकेशन का एक और सबसे बड़ा पर्पस या ऑब्जेक्टिव है, जो कि है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का निर्माण।
0: यानी हमें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना है, बल्कि सेंसिबल भी बनाना है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ IQ ही नहीं, EQ भी उतना ही जरूरी होता है।
1: एम्पथी, पेशेंस, डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिस्पेक्ट, ये सब क्वालिटीज मार्कशीट में नहीं लिखी होती, लेकिन जिंदगी में बहुत काम आती हैं।
0: और जब शिक्षा हमें इन क्वालिटीज से एनरिच करती है ना, तब तो अपना असली जो पर्पस है वो फुलफिल होता है। और एक बात तो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है अंजलि, वो ये है कि शिक्षा हमें ना अपनी पहचान ढूंढने में हेल्प करती है।
1: बिल्कुल, हर इंसान एक जैसा नहीं होता दोस्तों। किसी को साइंस पसंद है, किसी को लिटरेचर, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को म्यूजिक और किसी को एंटरप्रेन्योरशिप।
0: बिल्कुल, असली एजुकेशन तो वो है कि हमें समझने का मौका दे कि हम कौन हैं, हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है और हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: यानी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ करियर बनाना नहीं है, बल्कि कैरेक्टर और पर्पस दोनों बनाना है।
0: बिल्कुल, और आज के यूथ के सामने अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, चैलेंजेस भी हैं। AI, सोशल मीडिया, स्टार्टअप्स, डिजिटल करियर्स, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है।
1: ऐसे में एजुकेशन का पर्पस बस सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना भी है, ताकि हम नए दौर के साथ खुद को अपडेट कर सकें और हर चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें।
0: सो फ्रेंड्स, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ टूल फॉर बिल्डिंग अ करियर, इट इज अ मीडियम टू अंडरस्टैंड लाइफ इटसेल्फ।
1: ये हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, सोचना भी सिखाती है। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना और समझना भी सिखाती है। सिर्फ जीना नहीं, बेटर वे में लाइफ को जीना भी सिखाती है।
0: इसीलिए कहते हैं ना कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर छिपे हुए उसके जो बेस्ट वर्जन है उसको भी बाहर लाना है।
1: सो कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप लिविंग एवरी डे एज येट अनदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी।

0: दोस्तों वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी पावरफुल एंड एनर्जेटिक ट्रैक. और अंजलि, आजकल हमने देखा है कि सारे न्यूज़ चैनल्स पे देखो या हमारी जो सोशल मीडिया की फीड है उस पे जो एक हम न्यूज़ देख रहे हैं वो, और जिसके बारे में हम बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं एज इंडियंस, वो है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हुआ था जुलाई 23 से 2 अगस्त तक चला, उसमें भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो एक्सेप्शनली अच्छा रहा है. हम लोग दे जो मेडल्स भी जीते हैं, और सिर्फ मेडल्स नहीं, 39 मेडल्स, यानी कि टैली में फोर्थ हम लोग की प्लेस रही है ओवरऑल मेडल टैली में, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज.
1: एग्जैक्टली. दोस्तों जब पहले हम ये सिनेरियो सुनते थे ना, तो वो MS धोनी का वो जो डायलॉग है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. लेकिन अब वो जो लाइन है, वो जो टैगलाइन है, वो शिफ्ट हो गई है. अब स्पोर्ट्स का जो सिनेरियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है.
0: बिल्कुल. और पहले जो चीज़ एज अ करियर ऑप्शन शायद लोग डरते थे या उसको एज बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव से एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन नहीं देखते थे, आई थिंक यहाँ आके वो चीज़, वो सारी जो थॉट्स हैं वो टूट रही हैं. वो जो लोग एक धारणा थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर खेल चाहे तुम देखो, क्योंकि इस बार हम लोग ने कुछ ऐसे गेम्स में मेडल्स लाए हैं जिसके बारे में आज तक हम लोग ने सोचा भी नहीं था. जैसे जूडो में इंडिया को गोल्ड मिलना वाकई एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग एक इवेंट हुआ है हमारे साथ, हमारी जो सक्सेसफुल जर्नी रही है हमारे खिलाड़ियों की.
1: हाँ.
0: तो दिखाता है कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की, और ऑफ कोर्स इस जो जर्नी को काफ़ी सीरियसली लिया, और सिर्फ खेल की तरह नहीं लिया, उसको एक प्रॉपर पैशनेट स्पोर्ट की तरह लिया है.
1: एग्जैक्टली. और सुष्मिता, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिन लोगों ने इस गेम को फॉलो किया होगा, इस इवेंट को फॉलो किया होगा, उनको कई न्यू गेम्स के बारे में भी पता चला होगा. क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, तो क्रिकेट, बैडमिंटन, यही सब अपनी जगह ज़्यादा बनाते हैं.

0: लेकिन जब हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स को फॉलो कर रहे थे, इवन मी पर्सनली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने ढेर सारे स्पोर्ट्स हैं, इतने सारे गेम्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी करियर हैं स्पोर्ट्स में भी, जो हमको पहले नहीं पता थे, बट ग्रेजुअली दे आर चेंजिंग द पर्स्पेक्टिव्स. और आज स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ में हम लोग अगर देखें तो कोचिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, इवेंट मैनेजमेंट, फिटनेस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स जैसे कई करियर ऑप्शंस जो हैं तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं.
1: बिल्कुल. और इन सब का जो हम कहते हैं श्रेय है वो उन खिलाड़ियों को ही जाता है जिन्होंने शायद, जिन्हें टॉप पे देख के कोई एक छोटा बच्चा जिसे अभी अपने इंटरेस्ट का पता चला हो,
0: हाँ.
1: वो उस फील्ड में एज अ उसको करियर ऑप्शन या उस खेल को परस्यू करना चाहता है. क्योंकि हमें हर फील्ड में अंजलि, जब भी हम किसी पायनियर ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं तो उन सब के लिए एक नया पाथ खुल जाता है जो अभी तक शायद उस चीज़ को, उस अपने इंटरेस्ट को उन्हें लगता था कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. लेकिन जब हम अपने आगे किसी को आइडियलाइज करने के लिए हमारे पास कोई होता है तो वो रास्ता थोड़ा सा आसान लगने लगता है.
0: एग्जैक्टली. और जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है आपके करियर का, जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, और अब उन्होंने जब यहाँ पे प्रदर्शन किया है और मेडल जीता है, तो कहीं ना कहीं उनका कमबैक भी लोगों को देखने को मिला है और उनको पता चला है कि कैसे लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलियर्स एंड सक्सेस, इट इज़ ऑल अबाउट हाइज एंड लोज. तो हमें उसी के साथ आगे बढ़ना है. तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज का हमारा सेगमेंट है करियर की बात, जिसमें हम अब आ गए हैं. और इस करियर की बात में हम आपके लिए लेके आए हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है करियर निर्माण में युवाओं की भूमिका, और वार्ताकार हैं सृष्टि पांडे. तो आइए सुनते हैं.
2: हमारे जीवन में हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, उसी प्रकार खेलों का हमारे जीवन में काफी महत्व है. खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाने से हमें बहुत से फायदे होते हैं, उनमें से एक है अच्छा स्वास्थ्य. खेलों से अनेक लाभ हैं, इनका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है. शारीरिक और मानसिक स्थिति को कायम रखने के लिए खेलों का बड़ा महत्व है, इसीलिए प्राचीन काल से ही खेलों को महत्व दिया जाता है. उस समय के खेल युद्ध की दृष्टि से खास होते थे, लेकिन आज के समय के खेल सिर्फ चुस्त और तंदुरुस्त नहीं बनाते हैं, खेलों का महत्व अब सभी लोग समझने लगे हैं. खेल को अब एक करियर के रूप में भी देखा जाने लगा है, क्योंकि खेल के बदौलत आज कई लोगों की अपनी अलग पहचान है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल जैसे कई महान हस्तियां शामिल हैं. खेल कितना महत्वपूर्ण है ये शायद बताते हुए शब्द कम पड़ जाएं, पर इसकी खूबियां खत्म नहीं होंगी. खेलों को एक करियर के रूप में तो देखा जाने ही लगा है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में बहुत लाभदायक साबित हो रहा है. करियर में खेलों की महत्वता कई ज़्यादा है. इसके द्वारा हम किसी भी वातावरण में लंबे समय तक काम करने की क्षमता मिलती है. इसके द्वारा हम शारीरिक तथा बौद्धिक दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं. खेल हमें ऐसी कई बातें सिखाते हैं जिससे हम अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं. खेलों से हम आपसी तालमेल रखना, साथ में काम करना और कभी ना हारने का जज्बा सीखते हैं. और हम भले ही किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं या सवारें, साथ में काम कर सकना, मजबूत इच्छा शक्ति बनाए रखना बेहद ज़रूरी है. और हम ये खूबियाँ खेल के द्वारा भरपूर तरह से सीख सकते हैं. आज के युवा एवं छात्र बाहर खुले ग्राउंड में खेलने की बजाय घर पर मोबाइल एवं कंप्यूटर गेम में ही खोकर रह गए हैं. इस वजह से उन्हें मिलती हैं कमजोर आंखें और मोटापे जैसी अन्य बीमारियां. अगर युवा इन बीमारियों से जूझेगा तो उनके करियर का क्या होगा, देश का क्या होगा? आखिर देश का भार इन युवाओं के कंधों पर ही तो है. देश की प्रगति के लिए युवाओं का जोश से भरा रहना बेहद जरूरी है. खेल उन्हें स्वस्थ शरीर देता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है. स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपना जीवन संवारता है, वे दुनिया से अन्याय, शोषण और हर बुराई से लड़ने की हिम्मत भी प्राप्त करता है. खेलों से जुड़कर अपने जीवन और करियर दोनों को ही सुंदर बना सकते हैं. वैसे तो ऐसे कई कार्य रहे हैं जो किसी को भी एक नौकरी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है, उनमें से एक है खेल. खेल आपको चुस्त और दुरुस्त बनाकर नौकरी के लिए फिट तो बनाता ही है, पर इसके कई और फायदे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा. स्पोर्ट्स कोटे के जरिए छात्रों को अक्सर अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिल जाता है, फीस कम हो जाती है और अन्य फायदे मिलते हैं. इस खेल कोटे के भी अपने नियम और कानून हैं, पर ये सभी नियम सिर्फ और सिर्फ युवाओं के करियर को मजबूती दिलाने के लिए बने हैं. खेल कोटा सिर्फ दाखिले में ही नहीं, देश के सरकारी संस्थान जैसे रेलवे, केंद्रीय विद्यालय आदि में नौकरी दिलाने में भी लाभदायक है. खेल के अनगिनत फायदे हैं. यह हमें आत्मविश्वास देता है जिसकी आज हर युवा को जरूरत है.

0: कितनी बार तो ऐसा होता है कि युवा परीक्षा तो क्वालिफाई कर लेते हैं पर इंटरव्यू में खुद पर भरोसा ना होने की वजह से असफल हो जाते हैं और उनका करियर चमक नहीं पाता। आज के युवाओं को ज़रूरत है कि वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करें, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो खेल और उसी के जैसे अन्य गतिविधियों में हिस्सेदारी निभाएं और हर दिन कुछ नया करें। यह ज़रूर उनके जीवन को एक नई सीढ़ी दिलाएगा और करियर को सुनहरा बनाने में ज़रूर मदद करेगा। जैसे जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे शरीर के पूर्ण विकास और करियर के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। खेलों में भाग लेने से हमारे शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। ये बालकों एवं युवाओं को मानसिक तथा शारीरिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे दिमाग का संतुलित विकास होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे मनुष्य आत्मविश्वासी एवं प्रगतिशील बनता है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि स्वस्थ जीवन ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इस तरह खेल हमारे जीवन और अतः करियर को सफल बनाने में सहायक है।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ता का शीर्षक था कि करियर निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थी सृष्टि पांडे।
2: तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे जो स्पोर्ट्स है उसमें भी हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ढेर सारी देख सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे ना सुष्मिता, कॉमनवेल्थ गेम्स की भी। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्टिंग इंडिया के अहमदाबाद शहर को मिली है। इससे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड जॉब्स में नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने की उम्मीद है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हम दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहेंगे अंजलि, कि जब हम किसी स्पोर्ट्स को देखते हैं ना और हमारे साथियों को लगता है कि वो एक्चुअली उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी करियर में कि आप ये भी देख लें कि आप सही इंटरेस्ट को डिफाइन कर पाएं कि आपके लिए क्या अच्छा है, और जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी को पहचानें और फिर उसी को चुनें। तो हो सकता है कि फ्यूचर में किसी क्लासरूम में आपके ही बारे में, आपके ही अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा हो रही हो।
2: एग्जैक्टली, और आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से आप जो आपका पैशन है उसको आर्टिकुलेट कर पाएंगे और उसको पहचान पाएंगे और उसके हिसाब से अलग अलग करियर्स एक्सप्लोर कर पाएंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो दोस्तों, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, तो सुष्मिता एंटरटेनमेंट भी तो देना है ना।
1: बिल्कुल,
2: तो आइए सुनाते हैं अपने दोस्तों को ये गाना।

0: तो दोस्तों कल्पना कीजिए, साल है 1872, समंदर किनारे बसा शहर मुंबई, जब शहर को चलाने वाला कोई मजबूत स्थानीय सिस्टम नहीं था। ऐसे समय में एक व्यक्ति खड़ा होता है, हाथ में तलवार नहीं है, ना कोई सेना है, बस कानून की किताब, तेज़ दिमाग और जनता के लिए धड़कता दिल। वो थे सर फिरोज शाह मेहता। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे इतिहास लाइन ऑफ बॉम्बे कहता है।
1: दोस्तों कहानी शुरू होती है 4 अगस्त 1846 में। ब्रिटिश भारत के बंबई शहर में एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है फिरोज शाह मिरवान जी मेहता। उनके पिता व्यापारी थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, और यही कारण था कि फिरोज शाह ने पढ़ाई में शुरुआत से ही असाधारण रुचि दिखाई थी। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया।
0: लेकिन दोस्तों उनकी मंजिल सिर्फ यहीं तक नहीं थी। वे इंग्लैंड गए, लिंकन्स इन में कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की और 1868 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे।
1: अब वो चाहते तो केवल लॉ प्रैक्टिस कर सकते थे और सुकून से आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।
0: और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक मुकदमे के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि मुंबई में सबसे बड़ी समस्या कानून की नहीं है, बल्कि शहर को चलाने की व्यवस्था में है। उन्होंने नगर पालिका व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया और फिर तैयार किया बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट 1872।
1: यही वो कानून था जिसने शहर की सफाई, सड़कें, स्वास्थ्य और नागरिक प्रशासन को एक व्यवस्थित ढांचा दिया। इसके लिए उन्हें फादर ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, और भारत में आधुनिक नगर प्रशासन की इस सोच को मजबूत आधार देने वालों में फिरोज शाह मेहता सबसे आगे थे।
0: लेकिन उनकी सोच सिर्फ शहर तक सीमित नहीं थी दोस्तों। उन्हें समझ आया कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारतीयों की आवाज़ सांसद और सरकार तक पहुंचनी चाहिए।
1: साल 1885, भारतीय इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी शुरुआती संस्थापक नेताओं में एक नाम था फिरोज शाह मेहता का।
0: दोस्तों 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो बने। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में नेताओं की रणनीति आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती चरण की थी।

0: संविधान, कानून, बहस और शांतिपूर्वक राजनीति दबाव के माध्यम से भारतीयों के अधिकार बढ़ाना चाहते थे। वो इस आदरवादी धारा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं।
1: लेकिन वो केवल नेता नहीं थे बल्कि एक शानदार वक्ता भी थे। ब्रिटिश अधिकारी भी उनकी दलीलों से प्रभावित होते थे
0: और जब ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी करते थे ना वो, तो उनकी निर्भीकता से करते थे कि उन्हें ब्रिटिश भी कहते थे, फेरोशियस मेहता।
1: 1900 में जनता की आवाज़ अखबार थे, जैसे आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसलिए 1910 में उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की और ये अखबार जल्द ही भारतीय राष्ट्रवादी विचारों की एक प्रभावशाली आवाज़ भी बन गया।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, फिरोज शाह मेहता शिक्षा के समर्थक थे और उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, भारत को आगे ले जाएगी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय प्रशासन और शैक्षिकरण सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिए।
1: 5 नवंबर 1915 फिरोज शाह मेहता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बनाई संस्थाएं, उनके बनाए गए कानून और उनकी सोच आज भी जिंदा है।
0: मुंबई की नगर व्यवस्था, भारत की लोकतंत्र राजनीति और नागरिक प्रशासन, इन सब में कहीं ना कहीं उनकी छाप दिखाई देती है।
1: आज हमने भारत के एक ऐसे नायक की कहानी सुनी दोस्तों, जिसने इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपनी असली छाप छोड़ी। तो दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट प्रेरणा पुंज और वी आर नियरली इन द एंड ऑफ आर प्रोग्राम सुष्मिता। और जाते जाते, और जो हम लास्ट में Q&A सेशन लाते हैं उसके पहले हम अपने दोस्तों को सुना जाते हैं अपने प्रोग्राम का ये आखिरी गीत।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रोग्राम के एंड में Q&A सेशन लेके आते हैं। तो कल का हमारा प्रश्न था,
1: कल का हमारा प्रश्न था अंजलि, कि मैथिली चरण गुप्त जी की पहली रचना क्या थी। और उसका जवाब है, उनकी पहली रचना थी हेमंत, जो कि कविता थी जो 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
0: और आज का हमारा प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है। आप अपना आंसर हमें भेज सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर, और इसी नंबर पर और हमारी ईमेल आईडी yuvvanialt@gmail.com पर आप हमें आज के प्रोग्राम के रिव्यूज़ भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
1: और मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव
0: को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी।

0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, संसद समीक्षा रात 8 बजे होगी, विधानमंडल समीक्षा रात 8:20 पर। संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। खेल दर्पण कार्यक्रम रात 10 बजे और 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सिया राम मिश्र से रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे की वार्ता संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में विनीता मिश्रा के गाए भजन और गीत प्रसारित किए जाएंगे। रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण होगा और 10:30 पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनिएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में, चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा रात 9:30 और 10:00 संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही के रिकॉर्डिंग। संसद समीक्षा रात 8 बजे होगी और सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। विधानमंडल समीक्षा रात 8:20 पर हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे ऋचा गुप्ता से की गई बातचीत, बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता होगी दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें। नमस्कार प्रयागराज, यह कार्यक्रम सुबह 8:45 पर होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन सुनिए सुबह 7:30। मुकेश मालवीय का गिटार वादन दोपहर 12:15 प्रसारित होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सोनू निषाद के गाए भजन और गीत सुबह 9:50 पर और रात 8:30। वॉइस ऑफ प्रयागराज, इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे

उद्योगपति विजय कुमार जायसवाल से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत, ये आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी निखार के अंतर्गत सीरम बनाने का घरेलू तरीका। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 होगा। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में अजय कुमार शुक्ल से सुनिएगा नीति वचन। 7:31 पर हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे का प्रसारण होगा। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का होगा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। दहियावा थाना होलागढ़ प्रयागराज से रविशंकर मोदनलाल पुत्र राजकुमार मोदनलाल सूचित करते हैं कि उनके पुत्र प्रद्युम्न मोदनलाल दिनांक 21 जून 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 19 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंगोरा और चेहरा लंबा है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर सूचित करें। पता नोट कर लें, रविशंकर मोदनवाल पुत्र राजकुमार मोदनवाल, दहियावा थाना होलागढ़, जिला प्रयागराज। और इसी क्रम में विजेंद्र कुमार पुत्र रामबाबू सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री रूपा दिनांक 2 जुलाई 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 36 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंगे हुआ और चेहरा गोल है। जिस भी किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8303913026। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8303913026। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।

रक्तदान तकलीफ देह नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें। रक्तदान महादान।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान समवेत स्वरों में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: अपरत्र लोकसभया अद्य विनियोग विषयकः विधेयकः षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमः पारितं गतः। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं लोकसभा आदिनाय स्थगिता। अत्रावसरे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनित्येषा अद्य कराधान अन्यविधि विधेयकं षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सदने प्रास्तवीत्। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य अन्येषु प्रकरणेषु च विपक्षीनां सतत अवरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणं बाधितम् अभवत्। संसदी एनडीए दलस्य मंगल मिलन रणनीतिक उपवेशनं सम्पन्नम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह शीर्षनेतारः नवगठित एनसीपीआई दलस्य सांसदाः च उपस्थिताः आसन्। संसदी मंगल मिलन प्रसंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघस्य मंत्रणा सभा अपि संजाता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्ये महानद्याः जलस्तरस्य ह्रासेन सह जलप्लावनस्थितिः शमम् उपैति। यद्यपि जलमग्न क्षेत्रेषु अद्यापि सहस्रशः जनाः जलावरोधस्य कष्टम् अनुभवन्ति, तथापि सर्वकारस्य आपद्रक्षक बलैः भोजनचिकित्सा सेवानाम् आपूर्तिः सुष्ठु क्रियते। आशास्यते यत् आगामि द्वि दिवसेषु स्थितिः पूर्णतया सामान्यं रूपं धारयिष्यति। अपरत्र केरलराज्यस्य अष्टसु जनपदेषु अद्य अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना उद्घोषिता। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य असम, मेघालय, उपहिमालयी, पश्चिमबङ्गाल, सिक्किम राज्येषु च अतिवृष्टिपरा रक्तसञ्चेतना प्रख्यापिता। एतदतिरिच्य श्वः यावत् हरियाणा, चण्डीगढ़, देहली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टि संभाव्यते। पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे अशांति तीव्रा अभवत्, यतः अद्य पाकिस्तानी सैन्यबलैः बाग मंडले निःशस्त्र नागरिकाणाम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी इत्यनेन समूहेन प्रोक्तं यत् पाकिस्तानी सैन्यबलं निःशस्त्र नागरिकाणाम् उपरि अश्रु गैस इत्यस्य प्रहारम् अकरोत्। जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी इत्यनेन घटनायाः चलच्चित्रं सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रसारितम्। एताः घटनाः पीओजेके इत्यत्र प्रदर्शनकारिणां विरुद्ध्य पाकिस्तानी सेनायाः वर्धमान क्रौरस्य मध्ये अभवन्। अनेन 50+ जनाः मृत्युमुपगताः। झारखण्डे झारखण्ड लोक सेवायोगस्य, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोगस्य च परीक्षासु कथित अनियमितता कारणात् सीबीआई अन्वेषणार्थं रांची नगरे छात्राणां विरोधः अद्य 11 दिनं यावत् अन्ववर्तत। आन्दोलनकारिणः अस्मिन् मासे 7 दिनांके झारखण्ड विधानसभां यावत् याचनानां समर्थनार्थं आन्दोलनं करिष्यन्ति। अत्रांतरे भाजपेति दलस्य सदस्यः निशिकांत दुबे इत्येषः नियुक्ति प्रक्रियायां भ्रष्टाचारं, स्वजन पक्षपातं च आरोपयन् सीबीआई अन्वेषणस्य याचनाम् अकरोत्। मुख्यमंत्री हेमंत सौरेनः, उच्चतांत्रिक शिक्षा मंत्रिणः सुदिव्य कुमारस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीय समितिं निर्मितवान् या छात्रैः सह संवादं विधास्यति। अपि च सः समितिं मासत्रये स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदिष्टवान्। होर्मुज जलमार्गे वस्तुवाहकपोते आक्रमणे

पंचों दुर्गा भैया के राम राम। हम कही कि भाई देखा दो चार पाँच दिना से ऐसे लगा रहा कि नज़र भाई टिकी रही कि कब बदरा बरसई, लेकिन देखा भाई देखा सवेराहाँ से ऐसा लगा कि खूब उमड़ घुमड़ के बादल जौन रहन खूब बरसत हैं और देखा मौसम बना बाटे। तो भाई देखा जौन एक कहा रहा कि इंतजार रहा कि बारिश हो जाए और देखा होत बाटे। तो भाई खेती किसानी के लिए तो ठीक है बा, लेकिन आज एक बात और भैया, खेती किसानी के लिए पानी तो बातें हुई और सबसे ज़्यादा हम जरूरी ई बात का भाई कि जौन बरखा के पानी बा एका कैसे सहेजा जाए कि काहे से कि जल संचयन होए और हर घर हर विद्यालय हर पंचायत हर किसान के का करे के चाही ई बहुत जरूरी बात है कि भाई देखा बूंद बूंद के लिए भाई देखा हर आदमी तरसत बा। खेती कहा जात है ना कि बरखा केवल मौसम नाही बाटे, काहे से कि भाई देखा ई बरखा जौन बा प्यास नहीं बुझात, पानी जौन आज के समय के जौन पानी भैया देखा शुरुआत से भी कहा जात है कि पानी बिना सब सून, तो पानी जौन बा प्यास नहीं बुझावत बल्कि आवे वाली पीढ़ी के लिए भी भविष्य संवारत है। पानी के हर बूंद जिंदगी के आधार बाटे और साथे साथे ई कहा कि अगर पानी बा तो भैया देखा खेती बा हरियाली बा पशु पक्षी बा उद्योग बा और हमार जीवन बाटे। अब पानी बिना और धरती अगर पानी ना रही तो धरती सून हो जाए, ये बिना इस जरूरी बा कि ई जौन बूंद बूंद पानी बा एका हम सब कैसे बचाई और एका जरूरी बा कि हम सब संकल्प भी ले कि भाई आवे वाले पीढ़ी के लिए वो भविष्य पानी जौन पानी बा एका संजोई के रखी जैया कि आवे वाले भविष्य भी एक उपयोग कर सके। अब पुरखन देखा हमारे बहुत सही रहे भाई, पोखरा रहा तालाब रहा सब कुछ रहा पानी सो, लेकिन धीरे धीरे देखा भाई आज देखा

गांव में भाई अब ट्यूबवेल हो गए बा, हैंडपम्प हो गए बाटे बहुत सारे, तो तालाब के जौन भाई अपन एक अस्तित्व रहा धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन फिर से जहाँ जहाँ तालाब बाटे भाई ओकर सफाई हो के बा, तो पानी तालाब रही, पुरखा रही, कुआँ रही भाई, ये सब जीवित रही हैं, तो पानी जौन बा धरती संजोवा जाई, थोड़ा संचय होई जमीन में जाई, तो भाई वो संरक्षित रही। तो कहा कि बोले कहा तो जितना पानी भाई धरती में उतरी उतना भूजल बढ़ी, और जितना भूजल बढ़ी उतने ही खेत लहलही हैं, पेड़ हरियर हुई हैं और जीवन खुशहाल रही। तो आज जैसा कहत रहे भैया कि देखा संकल्प लेहे के पड़ी, बूंद बूंद पानी कैसे ही बरखा के पानी बचाई, और साथे साथे हम सब पानी के ऐसे उपयोग करी कि जितना उपयोग बा उतने ही करी। भाई चलाए दिन ट्यूबवेल चलत बाट है भाई, मेड़े में लगाए दिन मेड़ कटा बा कहीं और बह जात बाट है, ठीक बा। और तालाब जौन बाटे भाई पड़ा है ओका जहाँ भाई सजोचे चाहिए, सफाई रखे के चाहिए, तालाब के पानी सुरक्षित रहे चाहिए, जानवर के ओका उपयोग होत रहा, अब वो धीरे धीरे भाई हम पाटत जाते ही तो देखा ये गलत बात है। और साथ में अपने लड़कन के भी भाई देखा पानी के उपयोगिता, जो लड़कियाँ गदेल हैं उन्हों के भाई सिखावे की जरूरत बा कि पानी हम कैसे संचय करी, एक एक कितनी जरूरत बाटे। तो भाई देखा बात बत कही हुई, और हम कही कि भाई देखा अपने जौन भाई परंपरा में पंचायती में तो विष्णु राजा के एक ठो भाई देखा लोकगीत बा, विकास गीत बा, काहे से विकास के बात होत बा तो विकास गीत सुना जाए विष्णु राजा के।

0: तो भाई देखा ई रहा पंच भैया विष्णु राजा के लोकगीत। हम कही भाई देखा आज के दिन और मंगलवार और आज देखा दिन आटे रामायण पाठ के। तो भाई देखा श्यामा चरण पांडे भैया देखा का बताओ तहाँ एक तुह सुनाओ पंच भैया भी सुने।
1: यह रामायण पाठ लघु कथा बाल कांड से है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भमानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्तम अस्थमीश्वरम।

रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, अक्षरों, अनेक अर्थों, छंदों और मंगलों को करने वाले श्री सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य शिव स्वरूप गुरुदेव जी की मैं वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनी चरा

करि किंकर मोहूँ सब मिली करहूँ छाणी छल छो।

पै सुख सुनी सुजन सब खल करी है उपहास। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, देवता दैत्य मनुष्य पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सभी की मैं हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा करें, इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और रामचरित अथाह है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाखा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन उसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट जन हंसी करेंगे। खल

सो विचार सुनि है सुमति जिनके बिमल विवेक। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम भक्ति से सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न बोलने में ही चतुर हूँ और संपूर्ण कला और सब विद्याओं से रहित हूँ। मेरी कविता सब गुणों से रहित है, इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है, उसे विचार कर इसको वह सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान है।

तो भैया देखा रामायण पाठ रहा श्यामा चरण पांडे जी के, तो देखा आप घड़ी की सुई भी कहा तो चले के, लेकिन चले से पहले एक जरूरी बात, देखा बारिश के मौसम बाटे, तो भाई ये बारिश खेती किसानी के लिए ठीक बा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान दे के बाटे। काहे से भाई देखा ऐसे समय मच्छर जनित तो रोग भी आए, तो उसे मच्छर से बचें, आसपास सफाई रखें, गंदगी ना पनपे पावे। काहे से ये जरूरी बा कि गंदगी पनपी तो बीमारी होई, तो साफ सफाई से रहें, जौन भी हो भाई ताज़ा और साफ सुथरा खाएं तो बीमारी दूर रही, तो भाई खेती किसानी भी ठीक रही। तो हम सब पंच भैया से विदा ले, तो पंचों राम राम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: ओम भैया।
0: हाँ
1: देखो सावन के महीना चल रहा है, हैं? और चारों ओर बरखा हो रही है और ये बरखा के मौसम में अपन फसल जब हम देखा था ना हरियर बरियर तो एकदम मन झूम उठा था।
0: बिल्कुल काहे ने झूमे सरला बहनी, देखो इतनी मेहनत की जात है और जब अपन मेहनत रंग लावत है तो वो बड़ा निक लागत है।
1: बहुत निक लागत भैया। और बरखा का मौसम चल रहा है वह के साथ हम सबका यू बात का ध्यान रखना चाहिए, अपन खेती के साथ ही अपन हरहा गुरु।
0: हाँ अपने हरहा गोरुन का जरूर ध्यान रखक है, काहे तरह जब देखो बरखा का मौसम होते है तो बहुत तरह की जो संक्रामक बीमारी है वे अपने हरहा गोरुन का घेर लेते हैं।
1: और अपन हरहा गुरु भैया जो संक्रामक बीमारी चपेट में आ जाते हैं ना यही के लिए हम सबका समय पे टीकाकरण करवा ले।
0: काहे तरह जब पहले तरह हम पंचे टीकाकरण कराए लेबे तो जो इस समय बहुत तरह की बीमारी आती खुरपका मुंहपका और यहाँ तक कहा थे कि जो बांझपन है वह नहीं होते।
1: ओम भैया कहा मतलब कि टीकाकरण से पशु के शरीर में जो रोग से लड़े क्षमता होता ना वो विकसित हो जाए।
0: तो अपन जो नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय है हुमा जाए के अपने हरहा गोरुन का टीकाकरण कराए सकत हो।
1: और ओम भैया टीकाकरण के बात करो ना तो टीकाकरण जो है सरकार द्वारा एकदम निशुल्क लगावा जाए।
0: हाँ तो ये चीजन का बड़ी आसानी थे अपनाए कहिया भैया अपने हरहा गोरुन के या अपनी खेती कहिया और अपने आप कहिया जो उन जेब पर खर्चा पड़े वाला है वही तो सुरक्षित भैया कर सकत हो।
1: तो इन चीज का हम सबका ध्यान रखना चाहिए कि अपन पशु का टीकाकरण जरूर करवा ले, गंभीर रोग से बचावे का है। और अगर गंभीर रोग से बची हैं भैया अपन हरा गुरु अपने साथ रही हैं तो अपन खेती बहुत बेहतर तरीके से हो सके।
0: हाँ और सरला बहनी देखो जब हम पंचन का आज की खबर पता चल जाते तो कितना नीक हो जाते।
1: कायन भैया अगर पहले से खबर पता चल जाता ना तो वही के अनुसार हम सब चला था।
0: तो सरला बहनी आज की खबर जाना जाए।
1: बिल्कुल जाना जाए भैया।
2: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रीकरण को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के 3,300 से अधिक किसानों को अनुदान

0: पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर आवेदन मांगे गए थे। जिन जिलों में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहां किसानों का चयन ई लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा और अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक मशीनों का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को कृषि ड्रोन, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मशीनों के उपयोग से खेती में समय की बचत होती है, श्रम लागत कम होती है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।
1: सरला बहनी,
2: हाँ भैया,
1: देखो ये ब्यारा तना तना की हरी हरी सब्जी जैसे देखो बाजार में यहाँ भैया दिखा रहे हैं, अपने ख्यातों बाद में बहुत है।
2: कायन भैया, देखो हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के फल जब अपने खेत में दिखात है। और तमाम तरह की सब्जी है, इस समय लौकी है, कद्दू है, तुरई है, और जब हरी सब्जी अपने थाली में आवत है ना, तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन सरला बहनी है का, देखो ये ब्यारा जोन अपन ख्यात में सब्जी है वह देखे तो बड़ी नीक लागत है, खाए बड़ी नीक लागत है, लेकिन जोन हम पंचे वही का तैयार करी थन तो वही में बहुत तना के जो है कीट पतंगा रोग दोग बहुत लागत है।
2: ओम भैया, ये के लिए हम सबका पहले से सचेत रह जरूरत है, अपने खेत की निगरानी करक जरूरत है, ताकि अपने जो फसल हैं और सब्जी हैं उनका हम कीट से बचा सके।
1: हाँ, तो आज अपने साथ देखो रिंकी कुमारी चौहान बहनी जुड़ चुकी हैं और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, तो आओ जाना जाए
2: भैया, और अपन पंच भैया भी जाने।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ खरीफ सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहाँ ढेर सारे हानिकारक कीट बीमारियाँ लगती हैं, उनका प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से वैज्ञानिक पौध रक्षा डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय खरीफ की ढेर सारी सब्जियां जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, लोबिया है, कंद वर्गीय सब्जियां हैं और टमाटर, मिर्च और बैगन भी है, तो इनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन हो कैसे?
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, अभी देखिए खरीफ का मौसम है, बहुत सारी सब्जियां हैं और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कीट रोग है उसका भी प्रमाण बहुत है। रस चूसक कीट तो बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, जैसे एफिड हो गया, जेसिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, इन सभी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ रासायनिक दवाइयों से हमें इसका प्रबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से कीट में जो है प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसी वजह से जब हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो एक दो साल के बाद वो रसायन जो है उस कीट के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें सेम केमिकल इस्तेमाल होने से प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित हो जाती है हानिकारक कीटों में, इसीलिए। और इसके साथ साथ जो हमारे मित्र कीट है, जैसे कि हम देखेंगे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया, तो इस तरह के जो मित्र कीट है उसका भी नुकसान होता है, वो भी हमारे खेत में से खत्म होते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें व्यवहारिक नियंत्रण हो गया, यांत्रिक नियंत्रण हो गया, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है या जो आर्थिक हानि स्तर से अगर कीट का जो स्तर है वो अगर ऊपर है, नहीं प्रबंधन हो रहा है, तभी हमें रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए।
3: और वो भी सुरक्षित
4: जितना हम जानते हैं कि CIBRC है या फिर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है कि इतनी ये दवा इतनी मात्रा में ही और इतने पानी में इतना जो रसायन है वो मिलाकर जो घोल बनाकर वो स्प्रे करना चाहिए उतनी ही मात्रा में, कभी भी रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब इस समय ढेर सारी सब्जियों की नर्सरी है, जैसे बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, खरी प्याज है, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, तो नर्सरी में कीट रोग का प्रबंधन कैसे हो?
4: देखिए नर्सरी की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि अगर नर्सरी की ही अवस्था से हम लोग रोग या कीट का प्रबंधन कर लेंगे तो आगे जाके हमारी जो मुख्य फसल है उसमें कीट और रोग हैं वो कम लगेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नर्सरी जो है जिसमें आद्र गलन रोग लगता है तो उससे, और जो हमारी क्यारी है उसमें अच्छे से पानी का जो निकाल है वो अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना चाहिए हमेशा नर्सरी के लिए। उसके बाद

0: शौर्यीकरण, वो भी भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। यह हमें शौर्यीकरण जो मई जून के महीने में जब तेज धूप होती है तब करना चाहिए। उस समय हमें जो पॉलिथीन सीट होती है 45 गेज की, उसे मिट्टी के ऊपर करके फिर शौर्यीकरण किया जाता है, जिससे कि ज्यादा गर्मी की वजह से जो भूमि के नीचे कीट हैं या रोग वाहक जो स्पोर हैं, अंडे हैं, वो सब मर जाते हैं इस वजह से। उसके बाद हमें भूमि शोधन भी करना चाहिए। भूमि शोधन हो गया कि जो 3 किलोग्राम जो घूरे की खाद होती है, हम जानते हैं, उसके अंदर 250 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा, जो हमारी जैविक मित्र फफूंद है, उसे मिलाकर थोड़े दिन तक रख देना चाहिए छाए में, और उसके अंदर पानी छिड़क कर अगर हम नमी बनाए रखते हैं, फिर 21 दिनों के पश्चात हमें अपनी क्यारी में 3 वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देना चाहिए।
1: ये कितने क्षेत्रफल के लिए?
0: ये सिर्फ 3 वर्ग मीटर के लिए, 3 वर्ग मीटर की जो क्यारी होती है सिर्फ इसकी मात्रा है।
1: उसमें 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 3 किलो गोबर
0: घूरे
1: की
0: की,
1: सड़ी खाद या कंपोस्ट में।
0: हाँ, उसमें मिलाकर रख देना चाहिए। उसके बाद जो नमी बनाए रखना, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे कि नमी रहे। उसके बाद ये जो मित्र फफूंद है वो इसमें बढ़ जाती है, फिर उसे हम जो हमारी क्यारी है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीज शोधन, अगर बीज शोधन ही हम कर दे तो वो जो आगे हमारी मुख्य फसल है उसमें रोग बहुत ही स्तर से कम हो जाता है। तो जो ट्राइकोडर्मा है उसका भी 4 से 10 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज शोधन हमें जरूर करना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे हम प्रतिरोधी क्षमता, किसी भी अगर बैंगन की प्रतिरोधी क्षमता की प्रजाति है या फिर टमाटर की जो प्रजाति है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता है कीट और रोग के लिए, तो वैसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे फसलों में रस चूसक कीट है उनके लिए भी बीज शोधन होता है, तो उसके लिए भी हमें इमिडाक्लोप्रिड 70WS का 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करना चाहिए।
1: यानी नर्सरी में ये काम पहले ही हो जाए।
0: हाँ, पहले ही
1: बीज
0: हो जाना
1: शोधन
0: चाहिए।
1: में डॉक्टर साहब, जहाँ रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन नर्सरी की, तो पौध जड़ उपचार भी तो जरूरी है।
0: हाँ, पौध जड़ उपचार भी हमें सीडोमोनास फ्लोरेसेंस से कर देना चाहिए 5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से। उसके बाद देखिए, हमें जब हम मुख्य फसल लगा दे रहे हैं तो साथ ही साथ जो परभक्षी पंछी है उसे भी एक बर्ड स्टेचिस हमें लगाना चाहिए, जिससे कि जो पंछी है हमारी फसलों में जो भी इल्लियां हैं उसे चुन चुन कर फिर वो खाती रहती हैं।
1: यानी बर्ड पर्चर
0: हाँ,
1: लगाएं,
0: बर्ड
1: टी
0: पर्चर
1: आकार का।
0: हमेशा टी आकार का लगाने चाहिए, जिसके ऊपर बैठकर पंछी आराम से फिर वो कीट जो है ढूंढ के खा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी मुख्य फसल है उसमें रस चूसक कीट का प्रकोप खूब ज्यादा मिलता है, तो रस
1: अक्सर बरसात में
0: अक्सर
1: तो
0: बरसात में तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा भी होता है, तो रस चूसक कीट जैसे एफिड जैसिड हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो नीला या पीला चिपचिपा फंदा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए,
1: यानी फेरोमोन ट्रैप।
0: फेरोमोन ट्रैप, ये जो रस चूसक कीट है उनके लिए नीले चिपचिपे या पीले चिपचिपे फंदे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि यह रस चूसक कीट आकर्षित होकर उसमें चिटक जाते हैं और फिर वो उड़ नहीं पाते हैं, इस तरह से इसका प्रबंधन होता है। इसके सिवाय जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है, नीम से बनता है,
1: यानी नीम कौड़ी का शक्कर,
0: हाँ, तो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो जैसा कि हम जानते हैं नीम हमेशा कड़वा होता है, तो ये भी है जो रस चूसक कीट है उनके बढ़ावा को कम करता है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सफेद मक्खी हो गई या रस चूसक कीट का जो आर्थिक हानि स्तर ऊपर जा रहा है, तब हमें जो फेनप्रोपैथ्रिन 30 EC नामक दवा है उसका 5 से 7 मिली प्रति 15 लीटर वाली टंकी के दर से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए।
1: या कोई दूसरी दवा?
0: दूसरी दवा भी है, जैसे कि स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC है, इसका भी 12 मिली प्रति टंकी यानी कि 15 लीटर पानी की दर से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, सुबह या फिर शाम को जब समय हो। निगरानी बहुत ही जरूरी है, तभी और तभी हमें कीट का पता चल जाता है, और सबसे अच्छा जब हम निगरानी करते हैं तो गंध पास हमें खेत में जरूर लगाना चाहिए। तो जो ल्यूसिनोड्स ऑर्बनलिस का ये गंध पास होता है बैंगन के लिए, तो वो हमें 3 से 4 प्रति एकड़ शुरुआती अवस्था में सिर्फ निगरानी के लिए लगाना चाहिए। अगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नुकसान या जो पतंगे हैं इसके अंदर आकर्षित होके आ रही है, तो उसके बाद हमें जो प्रबंधन करने के लिए 30 से 40 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9924876728 9924867728 9924877628।
1: डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान, आज आप कार्य

0: कम में आई और खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सलाह भाई, नहीं देखो जब इतनी नेक बतकही सुनवाए दिन हुए तो हम देख रहे हैं कि आप मुस्काया रहे हो बहुत ज्यादा है।
2: काया न भैया, देखो सावन का महीना है और झूला पड़े हैं, हैं सब बहनें अपने मायके में आके झूला झूल रही हैं, तो हमारा मन कहा था भैया कि कजरी उजरी सुन लेन जाए।
1: बिल्कुल, अपने पंचो बहन देखो कजरी सुनवाओ बहनी।
2: मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में कजरी तो सुना जाए और पंचो भैया भी सुने आनंद लिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: सरला बहनी,
7: हाँ भैया,
6: अपने बीच का किसान भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं और तना तना

0: के नवाचार अपनी खेती में यहाँ अपनावत हैं।
1: ओम भैया, जोन किसान होते ना, हम सब अपन खेती करत हन, मुला की कुछ ऐसे किसान होते जो नई तकनीकी अपनाए रहे हैं, तो वे सबसे अलग हो जाते हैं और ऐसे सफल किसान भी रहते हैं।
0: तो देखो आज के किसान जो है अचल कुमार मिश्र भैया अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो आओ सुना जाए।
2: आज हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी जनपद के बिजुआ ब्लॉक के मेड़ईपुरवा गांव से गन्ना उत्पादन से जुड़े अचल कुमार मिश्र भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप कृषि में विविधीकरण और खास करके मिठास फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय रकबा कितना है आपका गन्ने का?
3: नमस्कार। इसमें लगभग हमारे पास तो 20 एकड़ जमीन का रकबा मैंने गन्ना बो रखा है,
2: हाँ,
3: और संयुक्त रूप से हम ज्वाइंट फैमिली में खेती करते हैं।
2: तो जो 20 एकड़ है, कुछ शरदकालीन होगा, कुछ बसंतकालीन होगा?
3: जी, कुछ शरदकालीन है और बसंतकालीन है, लेकिन ज़्यादा रकबा जो हमारे पास है वो शरदकालीन गन्ने का है,
2: लगभग कितना?
3: लगभग 5 हेक्टेयर, 12.5 एकड़।
2: 12.5 एकड़ शरदकालीन गन्ना है
3: जी
2: और लगभग 7.5 एकड़ आपका बसंतकालीन गन्ना है।
3: जी
2: कौन कौन सी वैरायटी आपके खेत में है इस समय?
3: इसमें जो नवीन प्रजातियों में है वो COLK 16202, COS 18231 और 14234 सामान्य प्रजाति का गन्ना है। साथ ही जो अर्ली में बहुत प्रमुख वैरायटी रही जिसकी गुड़ बहुत अच्छी बनती है, COJ 85, जो बहुत पुराना गन्ना है, वो भी हमारे पास है।
2: तो इस समय फसल कैसी चल रही है?
3: फसल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पिछले वर्षों हमारे यहाँ लगातार तराई में ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए गन्ने के लिए हमारा जिला पहचाना जाता है। इस वर्ष बारिश थोड़ी कम है
2: तो उसका असर क्या गन्ने की फसल पर है?
3: जी, उसका असर लगातार अभी तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें लगता है आने वाले दिनों में अगर बरसात कम होती है तो हम लोगों का उत्पादन घट सकता है।
2: लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है।
3: जी, अभी बारिश शुरू हुई है, लेकिन पिछले वर्षों में लगभग 15 जून तक हमारे यहाँ मानसून आ जाता था। अब की मानसून की बरसात बारिश जो है लगभग 20 दिन लेट हुई है, इससे जो है काफ़ी अधिक फसलें प्रभावित हुई हैं।
2: तो आप जीवन रक्षक सिंचाई करते रहे होंगे गन्ना में?
3: जी, लगभग हमारे पास विद्युत संचालित नलकूप हैं, उससे हम लगातार जो है सिंचाई करते रहे हैं।
2: इस समय हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है, तो उसके प्रबंधन के लिए क्या कर रहे हैं?
3: देखिए, पहली बरसात में सबसे ज़्यादा समस्या जो है किसानों के सामने वो पोका बोइंग रोग की आती है।
2: आपके यहाँ है लक्षण?
3: जी, पोका बोइंग के लक्षण जब आते हैं तो गन्ने की ऊपर की जो पत्ती है वो लगभग एक मड़ोड़ सी जाती है, ऊपर से उसमें ऐठन आ जाती है,
2: जी,
3: उसको पोका बोइंग रोग कहते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें तो वो बीमारी दूर हो जाती है और गन्ना बहुत ही अच्छी तरह से उत्पादन दे सकता है।
2: तो आपने ऐसा किया अपने गन्ना के खेत में?
3: जी, बिल्कुल किया है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं किसानों को सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, पोका बोइंग रोग है या पायरीला है, इसके लिए लगातार हम उनको कौन सी इंसेक्टिसाइड उनको डालनी है, कौन सी फंजीसाइड उनको डालनी है, इसके लिए लगातार उनको हम अपनी जो है सुविधा अनुसार उनको जानकारी दे रहे हैं।
2: यानी अपने अनुभव से उनको सलाह दे रहे हैं
3: जी
2: कि जैसा आपने किया है वैसा वो भी करें ताकि उनको भी लाभ मिले।
3: जी जी
2: अचल भैया, चूंकि गन्ना उत्पादन से आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो गन्ने की बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम तो हमारे लिए होता है बीज, क्योंकि देखिए बीज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा बीज है, रोग मुक्त बीज है, तो उसकी बुआई आप करेंगे तो आपको एक तो रोग नहीं प्रभावित करेगा, साथ ही साथ सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई करनी है, खेत का समतलीकरण करना है, उसके बाद अच्छे से उसको पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद उसकी आखिरी जुताई जब हम बुआई से पहले करेंगे रूटावेटर से, तो उसमें 10 किलो एकड़ के हिसाब से लगभग जिंक सल्फेट देनी है हमको आखिरी जुताई में। साथ ही साथ प्रयास ये करें, अगर हम ग्रीन मेन्योर करते हैं,
2: यानी हरी खाद।
3: हरी खाद करते हैं, जैसे कि ढेंचा है, मूंग है, सनई है, तो हमारी उर्वरा शक्ति जमीन की बढ़ जाएगी और हमारी फसल अच्छी होगी।
2: खेत का हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा।
3: जी, जो हमारा सबसे मेन चीज़ होती है जमीन के अंदर वो कार्बन होता है, वो कार्बन जो है 0.8 से ऊपर रहना चाहिए। प्रत्येक किसान को इस चीज का मतलब ध्यान रखना चाहिए।

0: ये कि हमको लगभग फसल के कटाई के बाद 1 महीना खेत भी छोड़ना है खाली, ताकि खेत खाली रहेगा तो उसकी कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ समय समय पर सड़ी लगभग 3 वर्ष की गोबर खाद का भी प्रयोग करना है, जिससे कि उसका कार्बनिक मैटर बढ़ जाए। अब बुआई में बीज के ऊपर जो है, बीज में आपको हमें सबसे पहले 10 माह का ही बीज लेना है,
1: जी
0: क्योंकि उसमें जो है शकरा की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमारा बीज जमाव बहुत अच्छा लेगा। अब बीज को शोधन की बात आती है, शोधन के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक ले सकते हैं, कोई भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड ले सकते हैं, कई सारे कार्बिंडाजिम है, अमीडा क्लोरोपिड है, फिफ्रोनिल है, ऐसी कई सारी थाइमेक्सोन
1: थायोमेथक
0: सीएस,
1: जाम
0: जी, ये भी आता है CS30%, कई सारी ऐसे इंसेक्टिसाइड सिस्टमेटिक आ गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जा रहे हैं। या आप जैविक रूप में शोधन करना चाहते हैं तो भी आप शोधन कर सकते हैं,
1: ट्राइकोडर्मा
0: ट्राइकोडर्मा से भूमि का शोधन कर सकते हैं, विभिन्न बैक्टीरिया से जो है आप जैव शोधन कर सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 8299-37-9800, 8299-37-9800, 82-99-37-98-00।
1: अपने अनुभव से और मिठास के किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
0: अच्छे बीज का उपयोग करें और जो मिट्टी जांच अवश्य कराएं, ताकि संतुलित उर्वरक दें, जिस चीज की जरूरत हो वही उर्वरक उसको दिया जाना चाहिए, इससे आपकी लागत घटेगी। और लागत घटाने पर ज्यादा जोर दें, मैगनाइजेशन की तरफ बढ़ें। खेती में बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान भी है। विज्ञान के बिना अच्छी खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकगण अच्छी प्रजातियां देते हैं, अच्छी हमको कीटनाशक देते हैं, अच्छी फफूंदी नाशक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमको कम लागत में ही अच्छा उत्पादन मिल सके। लगातार वो प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास को जमीन के ऊपर उतारने का काम हमारा है, इस पर किसान भाइयों को ज्यादा जोर देना।
1: अचल कुमार मिश्र भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आपने पढ़ाई लिखाई के बाद सीधे कृषि से जुड़ गए, खास करके मिठास की फसल का उत्पादन आप लगातार कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और साथ में कृषि में विविधीकरण भी कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरला बहनी, अपन खेती पाती देखो मौसम पर आधारित रहते हैं, और अगर हम पंचन का मौसम के हाल पहले से पता चल जाते हैं तो हम पंचे अपन खेती का काम पहले से निपटाए सके थे।
3: बिल्कुल भैया, तो काहे ना मौसम का हाल जान लीन जाए।
2: भारत
3: सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम का हाल यह प्रकार से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज यानी 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है, और कहूँ कहूँ तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के भी संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी संभाग में लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है, और यही के साथ कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
5: पर हम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: ओम भैया, अपन बैठ की कैसन लाग, यह के खातिर अपने पंच के प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, और प्रतिक्रिया दे खातिर चिट्ठी पाती जरूर लिखें।
2: तो कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है 22601।
3: और अपने कार्यक्रम में मेल करे खातिर पता है farmandhome@lko.gmail.com।
2: तो सरला बहनी, अब देखो चलक हो रही बेरिया, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कहाँ है? जॉब पर हूँ।
6: बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ।
7: ऑफिस में?
5: मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है।
7: अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी।
7: भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा।
5: मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ।
8: योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी। एक रिपोर्ट।
10: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
9: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। श्री खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास

0: की गति को आगे बढ़ाएगा।
1: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हों उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
0: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। सपा सदस्य डॉ मान सिंह यादव ने विगत 3 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवंटित बजट पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है।
2: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
0: ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुई। ये बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश सरकार ने आज राज्य के 13 IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इनमें 4 मंडलायुक्त भी शामिल हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रबंध निदेशक PCDF वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त, शंभू कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हटाकर बरेली का मंडलायुक्त और डॉक्टर लोकेश M को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि सारनाथ के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर उसके प्रचार प्रसार को नई गति देगी तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी।
3: ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इनक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। सारनाथ से निकल करके जो संदेश भारत के संदेश के रूप में, भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में, धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ में जो संदेश यहाँ से निकला, इस संदेश ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का बहुत

0: बड़ी आबादी के जीवन को अवलंबन दिया है।
1: केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसके पूर्व वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने मेरठ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, शामली सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। एक रिपोर्ट।
2: बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जनपद हापुड़ में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर आते कांवड़िए बारिश में भीगते हुए काफी आनंदित दिखाई दिए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर शक्तिधरनाथ पांडे की वार्ता, संस्कृत साहित्य वर्षा वर्णनम।
4: संस्कृत वांग्मयम् खलु विशालम्, अत्र वेदोपनिषत् पुराणानि महाकाव्यानि खंडकाव्यादीनि समुल्लसन्तीति को न जानाति। वाङ्मयस्यास्य वर्णन वैविध्येन सहैव प्रकृति वर्णन बाहुल्यं दर्शं दर्शं तत्सौन्दर्यं माधुर्यं च पायं पायं तल्लालित्यं स्मारं स्मारं नव्यतां भवितां श्रावं श्राव मत्सयेनालौकिकम् अनुपमं परमानंद मनुभवन्ति न केवलं भारतीय मनीषिणः अपितु वैदेशिकाः विद्वांसश्च। लोकरंगे सौंदर्यमयी स्वरूपमयी प्रकृति नटीयं मुहुर्मुहुः अवलोक्यते। सा प्रकृति नटीयं यस्योत्संगे नरी नर्ति, सा जनजीवन हित संदर्शनी कृषक कार्य निर्देशिनी सर्वसमुन्नति कारिणी सर्वप्रसादयित्री समृद्धि साधयित्री जीवन संचार इत्री अपार संसार धात्री जलमयी शिव मूर्ति ही केशाम मनो नरमयति। ग्रीष्मर्तो हो तापातिशयाद विघ्नाः न केवलं सामान्याः जनाः किंतु संतो महांतो धीमंतः श्रीमंतोपि हसंतः संतः मेघाडंबरं प्रतीक्षन्ते। वर्षर्तो हो मेघमालेयं यदा नो वारि बिंदुभिः प्रीणाति पुष्णाति तदा सामान्या अपि आबाल नर नार्यः आमोदन्ते तरामिति। तदा सहृदयानां सुकुमार मतीनां कवीनां कथं न रंसते चेतः। अतएव हि प्रत्नादि वाङ्मये वेदारभ्याधुना काव्यपर्यन्तं कविवरैर्महतोत्साहेन वर्षा वर्णन कृतमित्यत्र नास्ति शङ्का अवसरः। अवसरेस्मिन् प्रथमं तावत् विविध ज्ञान विज्ञान भूतेषु संस्कृते राधार रूपेषु वेदेषु वर्षतो स्वरूपं प्रस्तुयते।

श्रीधरई सुरेन्द्र वर्षर्तौ मेघाडम्बरे नभसि जलातिशय प्लुतायां धरायां तमसावृतासु दिक्षु तत्शब्दचित्रं प्रस्तौति चादिकविः। घनोपगूढं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति न वैर्जलौघैर्धरणीवृतृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। एवमेव पुराणमूर्धन्ये श्रीमद्भागवत महापुराणेपि वर्षर्तो भूरिशो वर्णनमस्ति। विशेषतो ध्यातव्यमस्ति एतद् वर्णन वैशिष्ट्याधारीकृत्यैव भक्तकविगोस्वामीपदभाजा तुलसीदासेन स्वामर महाकाव्ये रामचरितमानसे किष्किन्धाकाण्डे वर्षर्तुवर्णनं कृतमिति सूर्यान्सूर्योद्भासते। सन्दर्भेस्मिन् प्रस्तुतः।

तूयन्ते कच्चित् श्लोकाः। श्रुत्वा परजन्यनिनदं मण्डूका विसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राग्यद्वद् ब्राह्मण नियमाते। भाषानुवादः चौपाई पद्य। दादुरी धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। किरयो वर्ष धाराभिर्हन्यमानान विभथु अविभूयमाना व्यसनय यथा धोक्षज चेतसः। हिंदी पद्यानुवाद। बूंद अघात सहि गिरि कैसे खल के वचन संत सहजैसे। मार्गा बभू संदिग्धास्तृणैश्छन्ना हि संस्कृताः नाभ्यस्यमाना श्रुतयो दुजै कालहता इव। हिंदी पद्यानुवाद। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परै नहि पंथ जिमि पाखंड विवादते गुप्त हुई सदग्रंथ। आसन्नुत्पथ वाहिन्यः क्षुद्र नद्यो नुसुस्ती पुंसो यथा स्वतंत्र से देह द्रविण संपदः। भावानुवाद। हिंदी भाषायां। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरे उधन खलई तराई। लोकबंधु सुमेघेशु विद्युतश्चल सौहृदा स्थैर्यम न चक्रु कामिन्यः पुरुषेषु गुणिषु। तदनुवाद। दामिनी दमक रहे न घन माही खल की प्रीति यथा थिर नाही। किम बहुना संपूर्णाध्याय वर्षर्तो हो मनोहारी वर्णम सहृदयानाम मनांसि आवर्जयति। तस्यैव एक मनोद्यम पद्यम साहित्याध्वनीना नाम कृते अतीव रमणीयं मनोहरं च वरीवर्ति। यत्र उत्प्रेक्षालंकार झंकारेण कविर वर्णयति यत् लोहितैरिन्द्रगोपैः हरितैः घासैः धौलोच्छिलीन्द्रैरेवं प्रतिभाति यत् कस्यचित् नृपस्यानीकिनी बहुवर्णिका अग्रसरेति सौन्दर्यमाधुर्याकूतिः। हरिता हरिभिषस्पै रिन्द्रगोपैश्च लोहिता उच्छिलीन्द्रकृतच्छायानृणां श्रीर्विभूरभूत्। अस्पष्टमेव यथा श्रीमद्भागवतस्य श्लोकार्धे वर्षत्वर्णम् उत्तरार्धे नीतिवर्णम् तथैव रामचरितमानसेऽपि कविनाङ्गीकृतमिति श्रीमद्भागवतस्य महत्त्वातिशयमेवावलोक्यते। कविता कामनी कान्तः कविकुलगुरुः कालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः। सन्दर्भेऽस्मिन् कालिदासानवद्यानि पद्यानि विना वर्णनमिदं निश्चयमेव अपूर्णतां यास्यति। मेघदूतमहाकाव्यं मेघसमर्पितमेवानेन तस्य महाकवेः मेघालोकं प्रति विशेषाग्रहोऽभिलक्ष्यते। गीतकाव्यस्य मन्दाक्रान्ता छन्दोबद्धा श्लोकोऽयं निश्चयमेव सहृदयानां चेताः चमत्करिष्यति। यत्र वर्षारम्भे नवजलबिन्दुनिपातेन औत्सुक्येन कृषकबालाः कृषैराधारभूतान् श्यामलान् अम्बुबाः नोलोकयन्ति। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिदं भ्रूविलासानभिज्ञै प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनै पीयमानः। सद्यः शीरोत्कषणसुरभिक्षेत्रमारुह्यमालं किञ्चित्पश्चाद् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण। कालिदासस्य प्रथमे काव्ये ऋतुसंहारे वर्षर्तोः सत्सु श्लोकबहुलेषु दिङ्मात्रोदाहरणानि उपस्थाप्यन्ते। भूयो भूयो गर्जं गर्जं मेघाडम्बरं विलोक्य मोदमानाः शोभमानाः मयूराः कथं भ्रामं भ्रामं मयूरीभिः समं बर्हान् प्रसारे नृत्यन्तीत्यहो काव्यानन्दमयं मनोहरं पद्यं।

0: चारि बिंदुवी निषिक्त बिंबाधर चारु पल्लवा निरस्त माल्या भरणानुलेपना स्थिता निराशा प्रमदा जनानाम। श्रृंगार अशोक प्रोतम पद्महो श्रावयितुम उत्सुकोहम यत्र मणीनाम भूषणो लसितेषु स्तनेषु मुक्ताभरणानि शोभन्ते तराम। सौमेव नववर्षाम्बुभि रोमराजयः परसिता अवलोक्यन्ते इति महाकवेः कल्पना प्ररोहा समुल्लस्तीति। दधति वरकुचाग्रैरुन्नतैर्हारयष्टि प्रतनु शितदुकूलान्यायतैः श्रोणिबिम्बैः नवजलकणसेकादुद्गतां रोमराजीं ललितबलिविभङ्गैर्मध्यदेशश्च नार्यः। गद्यकाव्यमपि काव्यस्य महत्वपूर्णः पक्षः। संस्कृतगद्यकाव्येषु प्रकृतिवर्णक्रमे महाकविः वर्षर्तोः वर्णनमपि कृतमिति निश्चयं सत्यञ्च वचः। समेषां गद्यकाव्यानाम् उदाहरणोपस्थापनं तु असम्भवमेव। अतः केवलं वासवदत्ताख्यस्य गद्यमहाकाव्यस्य एकानुच्छेदमाध्यमेन प्रस्तूयते प्राविट्वर्णनम्। प्रतिपदं श्लेषमयमिति सुबन्धुमहाकवेः प्रतिज्ञानुसारमेवात्र प्रतिपदं सोपमाश्लेषालङ्कारमयता नितराम् आह्लादयति। एकदा तु कतिपयमासापगमे काकलीगायनयु समृद्धनिम्नगः नदः सायन्तनसमययु नर्तितनीलकण्ठः कुमारमयूरयु समारूढसरजन्म महातपस्वी यु प्रशमितरजप्रसरः तापस्यु धृतजलदकरकः प्रलयकालयु दर्शितानेकतरणिविभ्रमः निरुपद्रौ काननप्रदेशयु घनोत्सुकितसारङ्गः रेवतीकरपल्लवयु हलिधृतकरः लङ्केश्वरयु समेघनादः बिन्धयु घनश्यामः समाजगां वर्षासमयः। वस्तुतः कतिपयैरेव क्षणैः संस्कृतवाङ्मये बहुलस्य दिङ्मात्रमपि वर्षर्तुनिरूपणमशक्यमेवास्ति। जयतु भारतम्।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शक्तिधरनाथ पांडे की वार्ता संस्कृत साहित्य वर्षावर्णनम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विनीता मिश्रा के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए नानक शाह की ये भक्ति रचना विनीता मिश्रा के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विनीता मिश्रा के गाए भजन और गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और

मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी

अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया

0: कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

के सदस्य राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 45 मिनट तक स्थगित रही। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सपा के सदस्य वेल में धरना देते हुए नारेबाजी करते रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच 39,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों के अनुरूप प्रस्तावित अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 6.47% है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय पर विशेष बल देने का उद्देश्य प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार करना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिले। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना, नई जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे सरकार नई विकास परियोजनाओं के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा सकेगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी है। इसके लिए ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं और गांवों में विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अनुपूरक बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए करीब 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं महिला कल्याण विभाग के लिए लगभग 1,094 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। शोर शराबे के बीच नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के पटल पर रखा। सपा सदस्यों को आगाह करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन

0: मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो खींचने की कोशिश की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मना करने के बावजूद निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। साथ ही बाकी सदस्यों को भी चेतावनी दी कि जो भी सदस्य इस तरह का आचरण करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नेता सदन ने अपना पूरा वक्तव्य दिया। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। इस बीच सदन के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आज का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। पीठ के द्वारा नियम के अंतर्गत जिन भी मुद्दों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लगातार सदन का माहौल खराब किया जा रहा है। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों से अधिक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कार्य कर रही है, जिसका समय समय पर अनेक माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जिससे जनता लाभ उठा सके। सदन में आज प्रश्न पहर शांतिपूर्वक चला। सपा के आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए के MOU के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री से प्रश्न किया। औद्योगिक विकास मंत्री के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करा लें कि ये MOU कराने लायक है या नहीं। शून्य प्रहर में नियम 39 में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग में विनियमितीकरण से वंचित तदर्थ नियुक्त प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण करने के संबंध में सूचना दी, जिस पर उमेश द्विवेदी समेत अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर शासकीय आदेश जारी किया जा चुका है। सभापति ने सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा संबंधी मामलों के लिए सदन की जो समिति बनी हुई है, ये मामला उसमें उठाएं और बैठक कर सम्मानजनक रास्ता नियम के दायरे में निकालने का प्रयास करें। सभापति ने यह भी निर्देश दिया कि नेता सदन अगस्त के माह में ही ये बैठक कर ले। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। शून्य प्रहर में ही समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के SCERT व डाइट में कार्यरत प्रवक्ताओं के ग्रेड पे 6,000 रुपए का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस मामले को भी शिक्षा के मामले सुलझाने के लिए नेता सदन की अध्यक्षता में बनी समिति में उठाने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया

वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले नरेंद्र चंचल के स्वर में आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

तलत अजीज की गाइस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस

0: विषय को उठाते नजर नहीं आते, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के बोर्रापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है, ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हका खेज़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल का मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर को रोकना और लोगों की बरवक्त इंदराज के लिए हौसला अफजाई करना है। इस बिल में ये गुंजाइश मौजूद है कि रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में अगर एक साल से ज़्यादा ताहम दो साल से कम की ताखीर होती है, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ ज़िला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बिल के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात का इंदराज करने में दो साल से ज़्यादा की ताखीर होती है, तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हुक्म पर ही किया जा सकता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से हो रहे रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की गई पैदाइश या अमवात की तस्दीक कर लें। पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और इससे मुतालिक जारी किया गया सर्टिफिकेट किसी फर्द को कानूनी पहचान फराहम करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई, तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी, अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने देते हैं।

0: मिसयूज करना चाहते हैं हर समय, हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए, हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर

0: इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अरकान नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्तपानी में पवित्र मां कंधुनी देवी गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भगवान शिव के कदीमी मंदिर में भी पूजा की। इससे कबल दिन में उन्होंने सदारती रेलगाड़ी के जरिए भुवनेश्वर से बहरामपुर का सफर किया, जो दिल्ली से आई थी। बहरामपुर से सदर जमहूरिया ने मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय किया। ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी उनके हमराह थे। मशाखी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान वाकई ये मंदिर माँ कंदुनी देवी को वक्फ है और ये गंधक के कुदरती झरनों के लिए मकबूल है, जिनके बारे में अकीदतमंद मानते हैं कि उनमें शिफायाबी की खसूसियात हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तई ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं, ताकि शिकायत के इजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखाधही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखाधही मामलों से निपटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नज़रसानी की है। नज़रसानी शुदा प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरों की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक करने का अमल इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा इस माह की 24 तारीख को शाया किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त अब 27 अक्टूबर को शाया होगी। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि शहरी इस माह की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल कर सकते हैं। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर इंदिराज का अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ा खेज करार देते हुए कहा है कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहाँ अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से बिला वजह हलाकती हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए

अब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुत्तला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका अहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नज़रिए की तौसीक करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर POJK के बाग ज़िले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद POJK में जारी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर JAAC ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए ये बात कही। JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद ज़िले के मकरी खत्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताज़ा वाक़ियात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फ़ौजों ने पूरे POJK में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरमीन को वापस भारत लाया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मुआशी जराइम में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वजारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरमीन से निमटने के लिए मुनज्जम इंटेलिजेंस की क्यादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इकतसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वजारत ने वाज़ किया कि साबका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमनो कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेत से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर ख़राब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारी में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक़िदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपये, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपये और कांसे के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपये नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की 6ठे दर्जे की चालुमपोन और वोरापोल थांगसाइंगा की जोड़ी को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ा खेज़ करार दिया है।

0: खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दोस्तों, गजलें सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि एहसासों का ऐसा सफर है जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। कभी मोहब्बत की खुशबू बिखेरता है तो कभी जुदाई का दर्द, तो कभी जिंदगी के गहरे सच से रूबरू कराता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम कहकशा की। हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। दोस्तों, कुछ आवाजें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक जादुई आवाज है हरिहरन जी की। उनकी गजलों में शब्दों की नजाकत है, सुरों की मिठास है और एहसासों की गहराई। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हरिहरन जी की गाई गजलें।

दोस्तों, गज़लों की यही खासियत है कि ये जितनी बार सुनी जाए हर बार कोई नया एहसास छोड़ जाती है। कुछ अल्फाज होठों पर रह जाते हैं और कुछ दिल की धड़कनों में बस जाते हैं। हरिहरन जी की आवाज़ में एक ऐसी कशिश है जो समय को जैसे कुछ पल के लिए थाम लेती है। उनकी गायकी में सादगी भी है और गहराई भी, जो हर श्रोता को अपने साथ बहा ले जाती है। तो उसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगली गज़ल।

दोस्तों, कभी मोहब्बत, कभी तन्हाई, कभी उम्मीद और कभी जिंदगी का फलसफा। गजल हर रंग को अपने भीतर समेट लेती है। शायद यही वजह है कि गजलें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी खूबसूरत लगने लगती हैं।

जो बरसों बाद भी दिलों में ताज़ा रहती है, यही गज़ल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। संगीत की दुनिया में कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं से परे होती हैं, और गज़ल उन्हीं में से एक है। गज़ल केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों की आवाज़ है दोस्तों। ये कभी मोहब्बत का पैगाम बनती है, कभी बिछड़ने का दर्द सुनाती है, तो कभी ज़िंदगी के अनकहे एहसासों को बड़ी खामोशी से बयां कर जाती है। दोस्तों, गज़लों को अपनी मधुर, भावपूर्ण और दिलकश आवाज़ से अमर बनाया हरिहरन जी ने। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई भी है, सूफियाना रूहानियत भी, और गज़ल की नफासत भी। उनकी आवाज़ सुनते ऐसा लगता है मानो हर शब्द अपनी पूरी संवेदना के साथ दिल में उतर गया हो। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है, गज़ल वो आईना है जिसमें दिल नज़र आता है, हर शेर में कोई ना कोई अपना सफ़र आता है।

दोस्तों, हरिहरन जी की मधुर आवाज़ और गज़लों की खूबसूरत अदायगी ने तो आज के इस कार्यक्रम कहकशा को सचमुच यादगार बना दिया। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है, कुछ महफिलें ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती, उनकी खुशबू देर तक दिलों में महकती रहती है। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके मन में ऐसी ही मधुर स्मृतियाँ छोड़ गया होगा। यदि इस प्रस्तुति ने आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाई हो और आपके दिल को सुकून दिया हो, तो हमारा ये प्रयास दोस्तों सार्थक है। और इसी विश्वास के साथ कि संगीत का ये सुंदर कार्यक्रम आपको पसंद आया और ये सुंदर सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में संगीत की मधुरता सदैव बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अपने इस कार्यक्रम कहकशा को अब यहीं विराम देते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहकशा, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा।

0: आयोजन पहले से थोड़े अलग और सीमित रूप में किया गया, जिसमें सिर्फ 10 खेलों को शामिल किया गया था। 10 खेलों के इस छोटे लेकिन बेहद कड़े महाकुंभ में भारतीय दल ने जो कमाल किया है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एक ऐसा संस्करण जहां भारत के कई पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेल कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं थे। शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, स्क्वैश और क्रिकेट की गैर मौजूदगी के बावजूद भारतीय दल ने शानदार जज्बा दिखाया और 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर अभियान समाप्त किया। 122 खिलाड़ियों के दल में से 38 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे, जबकि गुलवीर सिंह 2 पदक जीतने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी बने। जरा एक नज़र भारत के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कुल प्रदर्शन पर। भारत के 122 खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सीमित खेलों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। अगर स्पोर्ट्स वाइज प्रदर्शन की बात करें तो मुक्केबाजी और एथलेटिक्स भारत के सबसे सफल खेल रहे, जहां दोनों में 10-10 पदक हासिल हुए। बॉक्सिंग में भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत जीतकर इतिहास रचा। वेट लिफ्टिंग से 8 पदक, जबकि पैरा एथलेटिक्स ने 6 पदकों के साथ दमदार योगदान दिया। जूडो में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया, जबकि पैरा पावर लिफ्टिंग से भी 1 कांस्य पदक आया। कुल मिलाकर भारत ने 39 पदकों के साथ ग्लासगो अभियान का शानदार समापन किया। अगर इस अभियान का सबसे बड़ा सितारा कोई खेल रहा तो वो था बॉक्सिंग। भारतीय मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड 10 पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 7 स्वर्ण और 3 रजत पदकों के साथ भारतीय बॉक्सरों ने साबित कर दिया कि अब कॉमनवेल्थ मंच पर मुक्केबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जैस्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। एथलेटिक्स में भी भारत ने कई यादगार पल दिए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में 2 पदक जीतकर लंबी दूरी की दौड़ में भारत की नई पहचान बनाई। वहीं तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डिकैथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जूडो और पैरा स्पोर्ट्स भी भारत की सफलता की बड़ी कहानी बनकर उभरे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मीराबाई चानू ने एक बार फिर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा, शर्मिला ढांकर और दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत को कुल 7 पदक दिलाए और ये साबित किया कि भारतीय पैरा खेल लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर पदकों की तुलना की जाए तो ग्लासगो में भारत ने बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 22 पदक कम जीते, लेकिन ये भी सच है कि इस बार प्रतियोगिता में केवल 10 खेल शामिल थे और भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले कई खेल कार्यक्रम से बाहर थे। बर्मिंघम में जिन 6 खेलों से भारत को 30 पदक मिले थे वो इस बार आयोजित ही नहीं हुए। ऐसे में 39 पदकों का ये प्रदर्शन केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि नए खेलों में उभरती भारतीय ताकत की कहानी भी कहता है। ग्लासगो ने भारतीय खेलों को नए सितारे दिए, मुक्केबाजी ने नया इतिहास लिखा, जूडो ने

0: प्रदेश शुरुआत की। एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स ने नई उम्मीदें जगाई और अब इन खिलाड़ियों की नजरें अगले बड़े लक्ष्य एशियन गेम्स पर हैं। यही है नए भारत के खेलों की पहचान, लगातार आगे बढ़ना और हर मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाना।
1: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक ओर भारतीय खिलाड़ियों ने 39 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को ही सौंप दिया गया। अब 2030 में खेलों के 100वें यानी कि शताब्दी संस्करण की मेजबानी करेगा अहमदाबाद। 2010 दिल्ली के बाद ये दूसरा मौका होगा जब भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: ग्लासगो में 11 दिनों तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य समापन हुआ, लेकिन समापन समारोह का सबसे यादगार पल वो था जब कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक रूप से भारत को सौंपा गया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारत की ओर से इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
2: ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है, भारत का झंडा शान से लहराया है। हालांकि ये वक्त हमारी जो गेम्स में हमें अधिकतम मेडल्स मिलते थे वो गेम्स को कट डाउन की गई है, फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने नई गेम्स में अपनी जगह बना ली और जगह बना के भारत का तिरंगा और शान से लहराया है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और साथ ही अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। कॉमनवेल्थ सेंटेनरी इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट है और अहमदाबाद उसे पूरी तरह से तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण का आयोजन करेगा और इसकी मेजबानी करेगा भारत का अहमदाबाद। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की दो बार मेजबानी करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का सफल आयोजन किया था। अब दो दशक बाद दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत पर होंगी। अहमदाबाद केवल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा बल्कि भारत की खेल क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आयोजन कौशल का भी वैश्विक प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और गुजरात सरकार इसे भविष्य के खेल भारत की नींव मान रही है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के ओलंपिक सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई खेल सुविधाएं, विश्व स्तरीय स्टेडियम, कोचिंग इकोसिस्टम और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के विकास की योजनाएं आने वाले वर्षों में भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। ग्लासगो में भारत ने 39 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और अब उसी ग्लासगो से भारत को मिली है एक नई जिम्मेदारी, कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी। 2010 में दिल्ली ने दुनिया को भारत की आयोजन क्षमता दिखाई थी, अब 2030 में अहमदाबाद उस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। अगला पड़ाव अहमदाबाद 2030।
1: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज जहां कप्तान श्रेयस अय्यर की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे को 3-0 से सीरीज अपने नाम की। हरारे में जो हुआ वो एक परफेक्ट कमबैक की कहानी है। आज हम बात करेंगे सीरीज के उस तीसरे और आखिरी मुकाबले की जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैच की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने से, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। इस मैच का असली हीरो रहा वो खिलाड़ी जिसकी उम्र जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, 15 साल का चमत्कार वैभव सूर्यवंशी। हरारे की उस धीमी पिच पर जहां रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता, वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 49 गेंदों में 81 रन की वो आतिशी पारी, 8 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। उन्होंने अपना अर्धशतक तो शानदार अंदाज में पूरा किया ही बल्कि ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की एक बेहतरीन और ठोस साझेदारी भी की। ईशान किशन ने भी 29 रनों का अहम योगदान दिया, हालांकि वो एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए। इसके बाद हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों की एक तेज पारी खेली और अंत में हमारे अपने फिनिशर रिंकू सिंह ने 25 रन जोड़कर स्कोर बोर्ड को रॉकेट की तरह रफ्तार दे दी। नतीजा, भारत ने 20 ओवर में 192 रनों का एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। अब जिम्बाब्वे के सामने था 193 रनों का लक्ष्य। T20 क्रिकेट में

0: 91 रन चेज करना कभी आसान नहीं होता, और जब सामने मयंक यादव जैसी एक्सप्रेस पेस हो तो बल्लेबाजों के पसीने छूटना तय है। जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत ही लड़खड़ाती हुई। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही अपना शिकंजा कस लिया। स्पिनर रवि बिश्नोई ने बेन करन को 20 रन पर मयंक यादव के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, असली कहर तो बरपाया मयंक यादव ने। अपनी आग उगलती गेंदों से मयंक ने जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अपने 4 ओवर के कोटे में महज 29 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। यश ठाकुर ने भी मयंक का बखूबी साथ निभाया और 45 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। अंततः 20 ओवर की समाप्ति पर जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर महज 157 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 35 रनों से अपने नाम कर लिया। इस 35 रन की शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। भारतीय बैडमिंटन को एक नया सितारा मिल गया है। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी वर्ग की सबसे युवा चैंपियन बन गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: महज 17 साल और 222 दिन की उम्र और एक ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 के महिला एकल फाइनल में वियतनाम की विश्व नंबर 21 नगुएन थुई लिन को सीधे गेमों में 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता। इस जीत के साथ तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बन गई और भारत का 17 वर्षों का इंतजार भी खत्म कर दिया। साल 2008 में साइना नेहवाल के बाद अब तन्वी शर्मा इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक गेम गवाया और अपने शानदार स्मैश, सटीक नेट प्ले और बेहतरीन रणनीति से सभी को प्रभावित किया। वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 रह चुकी तन्वी शर्मा का ये खिताब भारतीय बैडमिंटन के उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत माना जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का उनका सफर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका है। भारतीय बैडमिंटन को एक और बड़ा सितारा मिल गया है और दुनिया ने एक नया नाम याद कर लिया है, तन्वी शर्मा।
0: अब बात एक ऐसे चमकते सितारे की जिसने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व कप की ट्रॉफी तक का शानदार सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर नल्लापुर रेड्डी श्री चरणी की। आज 4 अगस्त है और आज ही के दिन साल 2004 में इस टैलेंटेड खिलाड़ी का जन्म हुआ था, यानी आज हमारी चैंपियन श्री चरणी का 22वां जन्मदिन है। उनके इस खास दिन पर नजर डालते हैं उनकी अब तक की शानदार यात्रा पर। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एरामला पल्ली गांव में जन्मी चरणी YSR कड़पा जिले से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला प्यार क्रिकेट नहीं था। 6ठी क्लास में उनके पिता चंद्रशेखर रेड्डी, जो रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन्होंने चरणी को बैडमिंटन की तरफ प्रेरित किया था। चरणी ने खो खो में भी हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत को तो उन्हें क्रिकेट के मैदान पर ही चमकते देखना था। उनके चाचा किशोर कुमार रेड्डी ने उन्हें खेल की ट्रेनिंग में पूरा सपोर्ट किया। दिग्गज क्रिकेटर स्मृति मंधाना और युवराज सिंह को अपना आइडल मानने वाली चरणी ने जल्द ही अपनी स्पिन से जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिसंबर 2024 में विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने इस युवा प्रतिभा पर दाव लगाया और उन्हें 55 लाख रुपए में टीम का हिस्सा बना लिया। मार्च 2025 में सीनियर विमेंस मल्टी डे चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया बी के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। साल 2025 उनके लिए सचमुच एक सुनहरे सपने जैसा रहा। अप्रैल 2025 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इसके बाद जून 2025 में जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपनी T20 डेब्यू करने का मौका मिला तो चन्नी ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट चटका दिए। श्रावंती नायडू के बाद T20 डेब्यू में 4 विकेट वाली वो सिर्फ दूसरी भारतीय महिला बनी। और उनके करियर का सबसे गौरवशाली पल तब आया जब उन्होंने 2025 के ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। अपनी बेहतरीन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों को खामोश कर दिया और विश्व कप ट्रॉफी उठाने वाले स्क्वाड का एक चमकता हुआ हिस्सा बनी। आज अपने 22वें जन्मदिन पर श्री चरणी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर आपके हौसले बुलंद हों

0: और मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी गांव या शहर आपकी उड़ान को नहीं रोक सकता। श्री चरणी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जनपद रामपुर में आयोजित होने वाली विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं और जनपद में उपलब्ध खेल अवसर रचनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं उप जिला क्रीडा अधिकारी संतोष कुमार।
1: मैं संतोष कुमार, उप क्रीडा अधिकारी जनपद रामपुर। आज वार्ता करते हैं खेलों में राज्य स्तर पर चमकते रामपुर के सितारे। जनपद रामपुर खेलों में पूर्व से ही काफी अग्रणी रहा है, जहां कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम विश्व स्तर तक रोशन किया है। चूंकि जनपद रामपुर एक नवाबों के शहर से भी जाना जाता है, जहां खेल बहुत ही अपने चरम पे रहा है, वो चाहे उसमें हॉकी रहा हो, फुटबॉल रहा हो, वॉलीबॉल रहा हो, कबड्डी रहा हो, एथलेटिक्स, ऐसे बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो कि अपने चरम पे रहे हैं। और आज हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे चमकते सितारे खिलाड़ी के रूप में आज निकल कर जा रहे हैं, उभर कर निकल रहे हैं, जिसमें जनपद से मैं समझता हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को अवसर मिला है, जो आज खेल के माध्यम से बहुत सारे विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी जो अपनी आज तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी खेल के रूप में हो। जनपद रामपुर चूंकि राज्य स्तरीय की जब हम बात करते हैं, तो देखिए मैं विगत वर्षों से देख रहा हूं कि जनपद रामपुर में कई खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और विभिन्न आयु वर्ग में आयोजन हुए हैं, जिससे कि सभी खिलाड़ियों को अवसर मिला। और निश्चित जब हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन होती है किसी भी खेल की, उससे जो जनपद के खिलाड़ी और आसपास के खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उनका देखकर स्किल सीखते हैं और उनका भी मन होता है कि मैं भी खेलूं और एक बड़ा खिलाड़ी बनूं। क्योंकि जिस समय वो मंच पर सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उस समय जो भी दर्शक के रूप में आते हैं, तो वो भी उनके पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन कोई भी हो, वो भी चाहता है और बच्चा स्वयं भी देखकर उससे मोटिवेट होता है और उसके अंदर एक भावना, खेल भावना जुड़ती है कि मैं भी खेल खेलूंगा। तो जनपद रामपुर चूंकि मैं जैसा कि बता चुका हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं राज्य स्तर पर चमकते सितारों की, जनपद रामपुर में एक उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के निर्देशन में हॉकी स्टेडियम नवाब जुल्फिकार अली स्टेडियम बना हुआ है, जिसमें बालक हॉकी छात्रावास स्थापित है। विगत कई वर्षों से ये संचालित है, जहां पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश से चयनित होकर हमारे खिलाड़ी चयन होकर आते हैं, उनकी सरकार के द्वारा समस्त सुविधाएं, चाहे वो खेल हो, चाहे आवास हो, ग्राउंड हो, उनकी शिक्षा हो, उन सभी पर पूरी तरह से सरकार उनका जो खर्च होता है उसका वहन करती है। उनका स्वास्थ्य हो, मतलब तमाम जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, खेलों की सामग्री हो चाहे जो भी हो, ऐसे कई छात्रावास उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, कई खेलों के हैं, जिसमें जनपद रामपुर हमारा हॉकी छात्रावास संचालित है। जहां पर मैं चमकते सितारों की बात करूं, तो राज्य स्तर पे तो लगभग हमारे यहां से प्रतिवर्ष करीब करीब जनपद की अगर हम बात करें तो विभिन्न खेलों में सैकड़ों खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रतिभाग कर रहा है और कई खेलों में मेडल भी लाते हैं बच्चे खिलाड़ी, जो कि जिसे हमारा जनपद रामपुर गौरवान्वित होता है, जिनका उत्कर्ष प्रदर्शन से हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हॉकी की अगर बात करें यहाँ पर, तो पूर्व में हमारे जनपद रामपुर से छात्रावास के कई खिलाड़ी राज्य स्तर से खेलते हुए चयनित होकर वो राष्ट्र स्तर तक भर उन्होंने प्रतिभाग किया और राष्ट्र स्तर पर स्कूल नेशनल खेलों में भी उन्होंने मेडल प्राप्त किया। पिछले वर्ष हमारे यहाँ कई खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो खेल आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता रहे, उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया, नगद धनराशि से सम्मानित किया, जिसमें हमारे यहाँ अर्पित कुमार, कमर फैयाज और मानवेंद्र, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगद धनराशि देकर उनको सम्मानित किया, चूंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से खिलाड़ी स्टेट और स्टेट से नेशनल स्तर तक जाते हैं, खेल कर आते हैं। इस वर्ष भी कई हमारे खिलाड़ी, आयुष भट्ट हैं, पूजन तिवारी हैं, आर्यन रावत हैं, ये विभिन्न आयु वर्गों में ऐसे खिलाड़ी चयन होकर जाते हैं और खेलकर हमारे जनपद रामपुर का नाम रोशन करते हैं। राज्य स्तर पर हॉकी के अलावा भी कई खेलों का आयोजन होता है। विगत वर्ष में जनपद रामपुर में ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिसका आयोजन किया गया।

पद्म पुरस्कार का आयोजक रहा। खेल विभाग ने उसका बढ़ चढ़कर और प्रशासन के सहयोग से बहुत ही अच्छा आयोजन कराया गया, जिसमें जो बाहर से टीमें आने वाली टीमों ने भी इसकी भूरभोर प्रशंसा की। वॉलीबॉल के साथ साथ फुटबॉल का भी आयोजन होते रहते हैं। इसी तरह से पिछले लगभग 2 से 3 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था, चूंकि बास्केटबॉल एक खेल बहुत ही अच्छा खेल है, जिसकी सुविधाएं अपने जनपद में भी हैं, जिसका आयोजन डीएमए स्कूल में किया गया और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। जो सुविधाएं हमारे जनपद रामपुर में जो मेहमानों की मेहमानदारी होती है, जिससे खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित होकर जाता है और वो हमेशा रामपुर में आयोजनों में शामिल होने के लिए आतुर रहता है। इसी तरह से कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल विभिन्न ऐसे खेल हैं जिनके हमारे जनपद रामपुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन हुआ और उन खेलों के आयोजन से ही हमारे जो चमकते हुए सितारे उसमें से चयन होकर आगे राज्य स्तर पर भी खेलने पहुंचे हैं। और अब बात आती है जो विद्यालय हमारे एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा हमारा सीबीएसई बोर्ड है। इस जनपद रामपुर में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपस में ये कंपटीशन हो रही है, खेलों की कंपटीशन है।

पुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन हुआ और उन खेलों के आयोजन से ही हमारे जो चमकते हुए सितारे उसमें से चयन होकर आगे राज्य स्तर पर भी खेलने पहुंचे हैं। और अब बात आती है जो विद्यालय हमारे एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा हमारा सीबीएसई बोर्ड है। इस जनपद रामपुर में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपस में ये कंपटीशन हो रही है, खेलों की कंपटीशन है कि मैं अधिक आयोजन कराऊं या आप अधिक आयोजन कराएं। दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके पीछे कारण मैं समझता हूं कि यहां के सुख सुविधाएं, यहां के जिला प्रशासन का सहयोग, यहां के जो माननीय हैं हमारे उनका सभी का सहयोग, उन्हीं सभी का योगदान, जिसके वजह से हम बाहर की जो टीमें आती हैं उनको एक अच्छा वातावरण दे पाते हैं, बहुत अच्छा खेलने का अवसर दे पाते हैं उनको, खेल मैदानों की अच्छी एक सुविधाएं दे पाते हैं, आवासीय व्यवस्था दे पाते हैं, उनको सुरक्षा दे पाते हैं। मैं समझता हूं कि जनपद रामपुर में जो भी खिलाड़ी आएगा वो मायूस होकर नहीं जाएगा, वो निश्चित ये सोच कर जाता है कि मुझे पुनः एक अवसर मिले, मैं रामपुर में जरूर प्रतिभाग करूंगा। जिसमें पूर्व में भी सीबीएसई जोनल जिसमें हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन जनपद रामपुर में पहले पूर्व में डीएमए ने कराया था, विगत वर्ष पिछले साल जो जोनल सीबीएसई जोनल का जो आयोजन कराया गया स्मार्ट इंडियन पब्लिक स्कूल के माध्यम से, जिनका आयोजन कराया गया, जिसका खेल मैदान हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया पर स्थित खेल मैदान पर आयोजन किया गया और बहुत ही शानदार जिसका आयोजन किया गया। विगत वर्ष के सफल आयोजन को देखते हुए पुनः इस वर्ष भी स्मार्ट इंडिया स्कूल को ये कार्यक्रम कराने का अवसर मिला, जिससे जनपद भी गौरवान्वित होता है और उनके सफल आयोजन से भी खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं और खिलाड़ियों को एक और अच्छा अवसर मिल पाता है। जो कुछ खिलाड़ी बाहर नहीं जा पाते हैं वो मैं समझता हूं यहां पर खेलकर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी वार्ता स्कूल विद्यालयों से होती रहती है बीच बीच में, जिन्होंने बताया है कि जनपद की इस सीबीएसई प्रतियोगिता के आयोजन में लगभग 10 से 12 या 15 टीमें करीब प्रतिभाग करती हैं। निश्चित एक हॉकी खेल में किसी जनपद की विद्यालयों की टीमें 10 से 12 टीमें अगर प्रतिभाग करती हैं, निश्चित वो खेल अपने अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, जनपद बढ़ रहा है उस खेलों में। और चूंकि मैं जैसा बता रहा हूं विगत 3 वर्षों से डीएमए दयावती मोदी स्कूल, उसके बाद सिम्स स्कूल लगातार दूसरी वर्ष इसका आयोजन कर रहा है सीबीएसई जोनल, चूंकि सीबीएसई जोनल में लगभग हमारा उत्तराखंड पूरा और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसमें शामिल होते हैं, इस तरह का आयोजन जो यहां पर होता है, और जिससे कई बच्चे, कई विद्यालयों के बच्चे जो हैं बाहर जाकर इससे सीबीएसई नेशनल और सीबीएसई नेशनल के बाद वो अन्य खेलों में भी हिस्सा लेते हैं, अपने प्रतिभा को निखारते हैं। खेलों को देखते हुए खेल अवस्थापनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जनपद रामपुर में वर्तमान में खेल अवस्थापनाएं बहुत बढ़ गई हैं जो खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। मैं समझता हूं कि आपके जनपद रामपुर में एक ऐसा जनपद जहां पर 3-3 स्टेडियम इस समय संचालित हो रहे हैं, नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया जहां पर हॉकी स्टो टर्फ ब्लू कलर का लगा हुआ है, बहुत ही प्रभावित करता है सभी खिलाड़ियों को, नवाब जुल्फिकार के बाद हमारा शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी जहां पर विभिन्न खेलों की अवस्थापनाएं इस समय निर्मित हैं, जैसे आपका स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, जिम हो, आपका वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, पिकल बॉल है, बास्केटबॉल का, ये अभी सिंथेटिक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और उससे कहीं बड़ी हमारे जनपद रामपुर में जो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा हमको एक सौगात के रूप में मिला है जो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक जो इसी वर्ष अभी जिसका कार्य प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष में एक वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण होकर खिलाड़ियों को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगन खेड़ा जहां पर हॉकी का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तैयार बना हुआ है, जहां पर भी हमारा हॉकी प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। मैं पूरे जनपद के स्कूल कॉलेज और विद्यालयों से साथ ही साथ उनके जो बच्चे हमारे हैं उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक इन अवस्थापनाओं का, खेलों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक जनपद से निकलकर हमारे राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और जनपद हमारा गौरवान्वित हो। बात करेंगे हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में। जैसा कि मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं कि जनपद रामपुर हमारे खेल स्टेडियम में अग्रणी है। जनपद रामपुर में चारों साइड पर विभिन्न खेल मैदान है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो एक सीजन है, खेलों का सीजन है, पूरी साल का ये निचोड़ खेलों का होता है, क्योंकि ये 2 से 3 माह हमारा अक्टूबर तक पूरा चलता है जिसमें विभिन्न खेलों के राज्य स्तरीय और
राष्ट्रीय स्तरीय आयोजनों का आयोजन होता रहता है, जिसमें जनपद

0: रामपुर में पूर्व में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिछले वर्ष, और इस वर्ष उसके सफल आयोजन को देखते हुए और जिला प्रशासन के सहयोग को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि होगी। इस जनपद रामपुर में माध्यमिक खेलों के आयोजन शुरू हो गए हैं, ये 4 अगस्त से बल्कि अभी स्टार्ट ही हो चुके हैं, 4 अगस्त से लेकर और भी अन्य खेल जिसमें पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 खेलों के जो आयोजन होने हैं पूरे प्रदेश में, जो राज्य स्तरीय तक आयोजन होंगे, जिसमें जनपद की टीम और मंडल की टीमों का चयन होना है। पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ सभी खिलाड़ी ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए चयन होने के लिए अपना अभ्यास करते हैं और वहां पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जनपद रामपुर खेलों में बहुत ही अग्रणी है, और इस वर्ष इस जनपद रामपुर में आपको CBSE जोनल का आयोजन मिला है, जो 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, जिसका आयोजन CBSE स्कूल स्मार्ट इंडियन स्कूल जो कर रहा है, और जिसका नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया में प्रतियोगिता का जो मैच है वो खेले जाएंगे। ये जो आयोजन होगा जिसमें पूरे आपके जनपद के लगभग 10 से 12 टीमें हैं, और उसके अलावा जो जोन है पूरा वो टीमें यहीं पर आएंगी और प्रतिभाग करेंगी। इस वर्ष भी माध्यमिक का जो राज्य स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता होनी है हॉकी की, जिसमें लगभग 107 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। चूंकि हॉकी खेल है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, जिसमें 18 खिलाड़ी, टीम मैनेजर, उनके कोच सम्मिलित रहते हैं, लगभग 20 की एक टीम तैयार होती है। और ये जनपद के लिए वास्तव में खेलों का मेला है, बहुत बड़ा एक मेला खेलों का हो रहा है, जहां पर 107 टीमें, आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से, वो चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, इकट्ठा होकर हमारे जनपद रामपुर में आएगा और उसको देखेगा, हमारे यहाँ की अवस्थापनाओं को देखेगा, खेल मैदानों को देखेगा, हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको देखेगा। मैं समझता हूं कि इस मेले में जो शामिल होंगे उन सबकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमारा, हमारे जो माननीय हैं, सभी लोगों का हम लोग को आशीर्वाद है, हम लोग को सहयोग है, और उसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक हम लोग उदाहरण बनकर तैयार होंगे कि जनपद रामपुर में इतना अच्छा, इतना शानदार हम लोगों ने आयोजन कराया है। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा से ये जो आयोजन कराया, 6 अगस्त 26 को सिविल सर्विसेज खेलों का, जिसमें 19 खेल हैं, जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स का आयोजन बमनपुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम रामपुर में किया जा रहा है। जनपद के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये चयन ट्रायल रखा जाता है, अधिक जानकारी के लिए खेल विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो मंडल और मंडल से राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर तक ये प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: दोस्तों, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। मैं हूं अवधेश, आपसे चाहूंगा अनुमति।
2: खेल दर्पण।

प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है काली प्रसाद मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित नारायण राव व्यास का राग हमीर में ख्याल गायन, आपके साथ तबले पर संगत के काली प्रसाद मिश्र ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति

0: दीदी, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। अपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. लोकसभा हैज